मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026, सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू

0: तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। पानी के अभाव के कारण कुछ किसान भाई धान की रोपाई न करके सीधे बुआई कर दिए होंगे। वह इस समय दूसरी निकाई अवश्य कर दें, ताकि खरपतवारों की मार का प्रभाव पौधों पर कम पड़े। समय से रोपाई किए गए धान में दूसरी निकाई गुड़ाई भी किसान भाई कर दें। यदि खेत में नमी का अभाव हो तो उसमें पानी अवश्य दें। ध्यान रहे कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए। लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी खेत में रहना चाहिए। दाने होने तक खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई करते रहने की आवश्यकता है। रोपे गए धान की उम्र 2 माह की होने पर नतजनी उर्वरकों की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। 12 किलोग्राम नतजन यानी लगभग 24 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करना चाहिए। यदि जल भराव वाले क्षेत्र हैं तो यूरिया के साथ 2-3 गुना मिट्टी मिला करके फिर टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। धान की फसल में खैरा रोग का भी प्रकोप हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या आती है तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को लगभग 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय मक्का की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। अगर संकर मक्का है तो 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़, कहने का मतलब ये कि लगभग 24 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। यह देसी मक्का है तो 8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि खेत में कभी भी पानी न लगने पाए। दाना पड़ने की अवस्था में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अतः यदि वर्षा का अभाव हो तो सिंचाई अवश्य करें। अब कुछ चर्चा दलहनी फसलों की। अरहर की फसल में यदि निकाई न की हो तो एक निकाई कर दें।

0: और खरपतवारों को निकाल दें। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि दलहनी फसलों के खेतों में पानी न लगने पाए। अतः अगर ज़्यादा बारिश होती है, खेत में ज़्यादा पानी लग जाता है, तो उसके निकासी की व्यवस्था अवश्य करें। जो किसान भाई धान की बुआई या रोपाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें चाहिए कि उनका खेत खाली है तो तोरिया की बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी करके अच्छी प्रजाति की तोरिया की बुआई करें। अगर असिंचित क्षेत्र हैं तो 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। अगर सिंचित क्षेत्र हैं तो 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्र में उर्वरक की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए। और यदि सिंचित क्षेत्र हैं तो 12 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस अंतिम जुताई के समय खेत में प्रयोग करते हैं, और बाकी जो यूरिया बचती है उसे फिर खड़ी फसल में बुरकाव किया जाता है। टाइप 9, पीटी 303, नरेंद्र अगेतीराई, ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी आप इस माह में खेती कर सकते हैं। 4 किलोग्राम बीज तोरिया का प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। कुछ किसान भाई गेहूँ बोने के लिए पलियर खेत भी रखे होंगे। वह खेत में जैसे ही ओट आ जाए उसकी जुताई अवश्य कर दें। जुताई के दो फायदे हैं, जहां एक ओर खरपतवार नियंत्रित होता है, वहीं दूसरी तरफ खेत में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। कुछ खेत ज़्यादा ऊंचे नीचे होते हैं, उन्हें समतल करने का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। गोपियां कहती हैं, हे मधुकर श्याम, आपने हमारे हृदय को, मन को

राम कहो या कहो श्याम, दोनों एक ही हैं, हैं कई नाम। मुसीबत में जिसको भी पुकारो, सुधारता है वही हमारे बिगड़े काम।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी, हरिहरन और ओम व्यास। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है मानवता की सेवा।
1: विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जीवन पर्यंत जिन भावनाओं व आदर्शों का पालन किया तथा सर्वजनों को जिसकी शिक्षा और व्याख्या जीवन पर्यंत करते रहे वह था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भाग् भवेत्। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन जो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गाया जाता था वो था वैष्णव जंतु तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। इन दो महापुरुषों के अमूल्य दार्शनिक व पूर्णतः व्यवहारिक विचारों में जनमानस अथवा मानवता की सेवा और उनकी पीड़ा दुख दूर करने की लालसा सर्वथा निहित है। विश्व के अनेकानेक धर्मों का जो सार है वह है मानवता की सेवा तथा दुखियों व पीड़ितों की पीड़ा का निवारण। हमारे मनुष्यों ने सहस्त्रों वर्षों से जो स्वर्णिम विचार हमें दिए हैं उसमें तो केवल मानव ही नहीं वरन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष, पर्यावरण आदि के प्रति श्रद्धा व सेवा का भाव ओम शांति शांति शांति के रूप में व्यक्त किया है। शांति का अर्थ होता है मानव समाज के ऐसे आचरण का जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे वो बिगड़ने न पाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सत्य पथ, करुणा, पवित्र विचार, त्याग आदि जीवन के शाश्वत मूल्यों की नितांत आवश्यकता होती है। इन विचारों से ओतप्रोत मनुष्य ही संसार के कल्याण के विषय में सोच सकता है और उसे कार्यान्वित करने हेतु मानवता की सेवा में सतत प्रयत्नशील रह सकता है। यदि हम दृष्टि डालें तो पूरे विश्व में और विशेषकर अपने देश में ऐसे सामाजिक व धार्मिक संगठनों की न्यूनता नहीं है जिनका मुख्य ध्येय मानव समाज की सेवा ही होता है। ऐसे अनेकानेक संस्थाओं में रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आनंदमयी आश्रम, सत्य साई संस्थान, स्वामी अवधूत राम कुष्ठ आश्रम, मदर टेरेसा संचालित संस्थाएं आदि का नाम उल्लेखनीय है। एक प्रकरण का उल्लेख करना उचित होगा। एक दिन दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किसी अति दीनहीन मनुष्य के दुख को देखकर स्वामी विवेकानंद से कहा कि हमें केवल सहानुभूति व्यक्त करने से ही सांत्वना नहीं मिलेगी वरन इसकी सेवा करने से, क्योंकि जीव शिव है, अतएव हर एक दुखी प्राणी को हमें भगवान के रूप में देखना चाहिए। अब इस प्रसंग को यहाँ छोड़ते हुए अपने बाल्यकाल जीवन के अनुभव को उद्धृत करना उचित समझता हूँ। अच्छी प्रकार स्मरण है कि स्कूल में हमें स्काउटिंग के प्रशिक्षण में सिखाया जाता था कि हम अपनी डायरी में नित्य प्रतिदिन ये उल्लिखित करें कि हमने कोई सेवा कार्य या किसी को मदद करने का कार्य किया अथवा नहीं। इसके लिए हमारे स्कूल व घर के वातावरण में सत्य बोलना, दया भाव रखना, बड़ों का आदर करना, दीन दुखियों की सेवा करना आदि जीवन के आदर्श पर काफ़ी जोर दिया जाता था। दुख की बात है कि आज के युग में हमारे जीवन में

0: उपभोक्ता संस्कृति का प्रवेश हुआ है उससे हमारे नैतिक स्तर का ह्रास तेजी से हुआ है। हमें याद है कि वर्षों पहले हम दरिद्र नारायण सेवा के बारे में बहुधा सुना करते थे, अब ये सेवाएं लुप्त प्राय होती जा रही हैं। इससे भी क्षोभ का विषय है कि मानवाधिकार के नाम पर बहुसंपन्न और बहुबली राष्ट्र अपना विचार अपने आयुधों के बल पर अन्य देशों पर थोपने में लग गए हैं। विडंबना यह है कि यह दुष्कर्म मानवता को नरसंहारी आयुधों से बचाने के नाम पर विश्व सेवा का रूप दिया जा रहा है। पुरातन काल से चले आ रहे हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत जो सेवा भाव तथा मानवीय भावनाएं निहित हैं उसी में विश्व का कल्याण है। अतएव भारतवर्ष का संदेश अहिंसा परमो धर्म को निभाने के लिए हमें मानवता की सेवा की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था मानवता की सेवा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नेत्रदान महादान। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपी मौर्य।
2: श्रोताओं, मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। विगत वार्ता में आपने सुना था कि कार्नियल ब्लाइंडनेस क्या है, कार्नियल ब्लाइंडनेस के प्रमुख कारण क्या हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्नियल ब्लाइंडनेस यानी स्वच्छ पटल अंधता को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका निदान क्या है, कैसे बचाया जाए। जब कार्नियल ब्लाइंडनेस की बीमारी शुरू हो जाती है तो उस समय हम कैसे बचाएं कि हमारी आंख में फूली या सफेदी न पड़े, यानी कि बीमारी के इलाज के दौरान बीमारी की जटिलता को कम करना, उससे भी विकलांगता को कम किया जा सकता है। अगर एक बार कार्नियल ब्लाइंडनेस हो गया, आंखों में फूली पड़ गई, तो अब हम कैसे उसको दृष्टिहीनता को वापस ठीक करें, उसको हम बोलते हैं विकलांगता का रिहैबिलिटेशन, तो पुनर्वास। तो इसका कार्नियल ब्लाइंडनेस का पुनर्वास तो एक ही है, नेत्र प्रत्यारोपण। अब हम पहले प्राथमिक बचाव की बात करेंगे कि आंखों को बचाओ, चोट से बचाना है तो छोटे बच्चों को नुकीली चीज ना दें, पटाखे से न खेलने दें तो बच्चों से उसको दूर रखें, और कभी भी कोई भी ड्रॉप आंखों में डालने से पहले प्रशिक्षित चिकित्सक को, नेत्र विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। अप्रशिक्षित चिकित्सकों को दिखा के स्टेरॉइड ड्रॉप या चश्मे की दुकान, दवा की दुकान से कोई दवा न लें। दूसरा, नियमित टीकाकरण कराएं, विटामिन ए की खुराक लें और हरी सब्जियों का सेवन करें। द्वितीयक बचाव, इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, स्वच्छ पटल की बीमारी का इलाज करते हैं। अगर संक्रमण हो गया तो हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर फंगस का संक्रमण है कार्निया में, कार्नियल अल्सर, तो एंटी फंगल देंगे। विटामिन ए की नियमित सरकारी मानक के रूप में विटामिन ए का डोज है, 6 माह से कम उम्र के बच्चों में 50,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट और 6 माह से 12 माह तक के बच्चों को 1,00,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट और 12 माह से ऊपर के बच्चों को 2,00,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन ए दिया जाता है, जो 2 हफ्ता के अंतराल पर दूसरी खुराक दी जाती है। और तृतीयक बचाव, टर्सरी प्रिवेंशन, जिसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ये पुनर्वास संबंधी गतिविधि है। इसमें अगर आंख में फूली पड़ गई तो हम केराटोप्लास्टी नामक सर्जरी करते हैं, यानी नेत्रदान से प्राप्त कार्निया को दृष्टिहीन व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर देते हैं। अगर फूली छोटा है तो हम ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी कर सकते हैं, मरीज को दिखाई पड़ेगा अगर कार्निया नहीं मिला है दान में तो। अगर कार्नियल ट्रांसप्लांट करने योग्य आंख नहीं है, फूली ज्यादा है, उसमें पैननस बने, खून की नसें, तो हम केराटोप्रोस्थेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन यहां हम कार्नियल प्रत्यारोपण के बारे में विशेष करके बताएंगे, क्योंकि आज हमारे देश में लगभग 2,00,000 कार्नियल की जरूरत है प्रतिवर्ष, लेकिन हमको 40,000 से ज्यादा कार्निया देश में मिल नहीं पा रही है। तो नेत्रदान को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है और हर किसी को नेत्रदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसमें हम मरने के बाद भी अपनी आंखों को जीवित रह सकते हैं, और एक नेत्रदान से, एक व्यक्ति के आंख के दान से हम 2 कार्नियल ब्लाइंड लोगों को जीवन में रोशनी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्रदान महादान। इस विषय पर डॉक्टर आरपी मौर्य की जानकारी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में है।

नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान महादान जो आपको बनाता है महान। मरता है शरीर अमर है आत्मा, नेत्रदान से स्वयं मिलता है परमात्मा। चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी खाक बन जाएगी। कर तो अपनी आंखों का दान, किसी की जिंदगी संवर जाएगी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के ससुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे सुरेश वाडेकर। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 9:50 होने वाले हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा सुनेगा रात्रि 10:00, जिसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। सामयिक चर्चा सुनेगा सुबह 9:15 पर, प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनेगा रात्रि 9:30 से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद्रा रानी की गजलों का लुत्फ उठाएगा रात्रि 8:00। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे अरुण पांडे के साथ सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा अनुभव खेती में इस विषय पर कपिल देव सिंह की सुनेगा बातचीत। साथ ही होगा विष्णु यादव का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 से। कार्यक्रम में होगी आज की बात साइबर बुलिंग और फिटनेस है जरूरी पर। साथ ही होगा कार्यक्रम में युवाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी गंगूबाई हंगल का शास्त्रीय गायन सुनेगा सुबह 7:31 पर। शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे चर्चा और आओ जाने पौराणिक ग्रंथों के बारे में। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत यादव की वार्ता। अलावा इसके सुनेगा कार्यक्रम में बाल गीत। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ होगा दिन में 11:00। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा बच्चों के द्वारा विविध प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनेगा दिन में 1:30 पर। आज इतवार है। इस कार्यक्रम में सुनेगा छिलकी, बड़े बाबू की कसरत, लेखक कैलाश गौतम और प्रस्तुतकर्ता विपिन शर्मा, और कार्यक्रम का समय दिन में 1:15। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनेगा दिन में 11:30 पर। कार्यक्रम में PCOS विषय पर बातचीत की है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी से शिखा श्रीवास्तव ने।

सामुदायिक गान शिक्षा पाठ सुनेगा सुबह 10:10 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाधुरी सुनेगा रात 8:15 पर। रसरंग शाम 7:50 पर। फिल्म संगीत शाम 7 बजे, शाम 6:10 पर और सुबह 10:10 पर। एक ही फिल्म से सुनेगा दिन में 2:30 पर। फोन कॉल्स पर फरमाइशी गीतों पर आधारित सुनेगा हेलो फोन इन फरमाइश दिन में 12 बजे से। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे की और मधुरिमा सुनेगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनेगा आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित दिन भर के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीति सम्बद्ध गतिरोधात् नीति सम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरन्तर क्रियमाणानाम् आलोचनानां प्रत्युत्तररूपेण प्रधानमन्त्री सुदृढार्थिक तथ्याङ्कान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन् इत्येतस्य निर्यातः अधुना 5.2 लक्षकोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालरूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते

तो घड़े में बजे हैं ठीक सात। बनारस का मौसम और आपका साथ दोनों ही अपने आप में एक एहसास है। तो नमस्कार बनारस, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में आज सुबह की जो हवा चल रही है ना, आहा, उसमें एक अलग ही मिजाज है। दोस्तों, सितंबर का महीना तो आ ही गया है और हमारा बनारस इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खड़ा है। मानसूनी बारिश और बदलते मौसम का अंदाज, दोस्तों हल्के हल्के उमस के बीच एक ठंडी हवा का झोंका बता रहा है कि अब मौसम बदलने वाला है।

तो दोस्तों, गंगा नदी का जलस्तर अभी भी उफान पर और अपनी पूरी भव्यता में है। घाटों पर पानी की लहरें और सुबह की धुंध का नजारा देखकर लगता है कि बनारस से खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनारस के इस बदलते मौसम पर, आपकी सेहत पर और बनारस की उस तासीर पर जो हमें हर मौसम में मस्त रहना सिखाती है।

अच्छा एक बात बताइए, जब जब मौसम बदलता है तब तब बनारसियों का मूड कैसे बदलता है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए भाई, आप तो बड़े समझदार हैं। हम तो दोस्तों सितंबर का यह जो महीना होता है ना, यह बड़ा नटखट मौसम है। बिल्कुल हमारे कृष्ण कन्हैया जी की तरह, अभी परसों उनके जन्माष्टमी बीती है ना, बिल्कुल मौसम भी उसी तरह हो गया है भाई। कभी धूप तो कभी अचानक बादलों की घेराबंदी और हल्की फुहारें, दिन में थोड़ी गर्मी और सुबह शाम में हल्की नरमी, और इसी बदलते मौसम का असर सीधा पड़ता है हमारी सेहत पर। तो बनारस, आपको पता है हमारे बनारस की सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? यहाँ दवा से पहले दुआ और काढ़ा काम करता है। लेकिन इस बदलते मौसम में थोड़ा संभल कर रहना भी जरूरी है। खान पान

में सावधानी, सुबह सुबह घाट की सैर के बाद अगर आप सीधे ठंडा पानी पी रहे हैं तो रुक जाइए। इस मौसम में गुनगुना पानी, तुलसी अदरक की चाय सबसे बेस्ट है।

तो बनारस चलो थोड़ा सड़क किनारे की चटकारे की बात हो जाए। लंका या गुदौलिया पर चाट और कचौड़ी का मोह हम बनारसी तो छोड़ ही नहीं सकते। क्यों बनारस है ना, लेकिन हाँ इस मौसम में बाहर के खुले पानी और कटे हुए फलों से थोड़ा परहेज ही रखिए। तो बनारस सुबह 15 मिनट की धूप, गंगा किनारे प्राणायाम, सुबह का टहलना, योग करना, और ये आपकी सेहत का वो टॉनिक है जो बनारस के बदलते मौसम के हवा पानी को आपके शरीर के अनुकूल बना देता है। दोस्तों मौसम कोई भी हो, जब तक शरीर दुरुस्त नहीं रहेगा तब तक खाने पीने का मजा कैसे आएगा, बोलो बनारस। तो सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी, आया ना समझ में? तो बनारस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि बात चल रही है हमारे अपने शहर बनारस की। तो दोस्तों आपने कभी गौर किया है बनारस और मौसम का रिश्ता कैसा है? बनारस कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है जो मौसम के हिसाब से खुद को बदले, बल्कि बनारस वो शहर है जो हर मौसम को अपने रंग में ढाल लेता है।

तो बनारस, गर्मी आए तो हम लस्सी और मट्ठे के रंग बिरंग जाते हैं, ठंड आए तो मलई और रबड़ी की खुशबू से गलियां महक उठती है, और जब ये मानसूनी विदाई का वक्त होता है ना, तो बनारस का हर घाट एक कैनवास की तरह दिखने लगता है। दोस्तों, गंगा आरती के समय उठती धूप, अगरबत्तियों की सुगंध और मणिकर्णिका से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक फैली वो आध्यात्मिक शांति, यही तो बनारस का असली मिजाज है। यहाँ का मौसम सिर्फ आसमान में नहीं बदलता, यहाँ का मौसम इंसान के मन के भीतर बदलता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर रिचा, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस।

तो दोस्तों आज का हेल्थ मंत्र ये है कि हंसते रहिए, मस्त रहिए और बनारसीपन को अपने दिल में जिंदा रखिए। मौसम चाहे जो भी हो, अपनी मुस्कान का मिजाज हमेशा खुशनुमा बनाए रखिए और बनारस से जुड़े रहिए। गुड मॉर्निंग बनारस में।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी वाराणसी। तो दोस्तों, आज 6 सितंबर 2026 दिन है रविवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास।

दोस्तों, महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। यह महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम का सबसे छोटा स्कोर है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को मुनीबा अली और सवाल जुल्फिकार ने अच्छी शुरुआत दिलाई। पांचवें ओवर में एक समय पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 27 रन था। 19वें ओवर में टीम ऑल आउट हो गई। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में एक और नया नाम जुड़ रहा है। ये लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे वेस्ट यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा और बिहार तक कनेक्ट

कनेक्टिविटी देगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी यूपीडा इस ढलेन के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे समेत 5 एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। 51 किलोमीटर लंबा ये लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे 4776 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, जो करीब 3 साल में पूरा होगा। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी है। टाटा सन्स ने चेयरमैन पद की रेस में देश के 3 प्रमुख कॉरपोरेट दिग्गजों टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी टीवी नरेंद्रन, टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ सौरभ अग्रवाल और एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान के नाम उभर कर सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के कैपिटल मार्केट के दिग्गज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक अधिकारियों में से एक आशीष चौहान इस दौड़ में अप्रत्याशित दावेदार साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए एक बार फिर नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जब भी कोई चालक ट्रैफिक नियम तोड़ेगा, उसके खाते में नेगेटिव पॉइंट जुड़ेंगे और तय सीमा तक उल्लंघन के पॉइंट पहुंचने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की उम्मीद जागी है। दोस्तों, गोपाल मंदिर के भव्य प्रांगण में शनिवार को दोपहर बाद मंदिर में केसर की गंध घुल गई। वैष्णो जनों की आतुरता अद्भुत दृश्यावली उपस्थित कर रही थी। सफेद वस्त्र धारण कर मंदिर पहुंचे पुष्टि मार्गी भक्तों ने एक दूसरे के साथ केसर युक्त दही से होली खेलकर नंदोत्सव मनाया। गोपाल मंदिर में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की अलग अलग टोलियां एक दूसरे के ऊपर दही पोतने में तल्लीन दिखी। दोपहर के पहले सफेद दिख रहे पुरुषों के परिधान देखते ही देखते केसर युक्त दही के रंग में रंग गए। ठाकुर जी के साथ दही केसर की होली खेलने के बाद भक्तों का समूह एक दूसरे पर दही केसर की बौछार करते हुए गर्भगृह से बाहर निकला। दोस्तों, यूजीसी की तरफ से जारी सीआरआर कैंडर रिक्रूटमेंट रूल को बीएचयू में कुलपति ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कार्यकारिणी परिषद ने भी इस पर मुहर लगा दी है। नए सीआरआर को यथावत जारी करने पर गैर शिक्षण कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इससे कई पदों का अस्तित्व समाप्त हो गया है तो कुछ ग्रेड पे लेवल घटा दिए गए हैं। यूजीसी की तरफ से 2022 में गैर शिक्षण पदों के लिए नए कैडर भर्ती नियम प्रस्तावित किए गए थे। तो ये था देश दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और देखते हैं आज के दिन में क्या है खास। तो चलो बनारस थोड़ा हिस्ट्री का तड़का लगा ही लेते हैं। तो बनारस, आज ही के दिन यानी कि 6 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस नेशनल रीडर बुक डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस यह दिन लोगों को अपनी पसंद की कोई अच्छी पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तिथि को फाइट प्रोक्रेस्टिनेशन डे और नेशनल कॉफी आइसक्रीम डे भी मनाया जाता है। और बनारस, पता है आपको, आज ही के दिन सन 1949 में भारतीय अभिनेता राकेश रोशन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन प्रसार भारती विधेयक सन 1990 में भारतीय संसद ने प्रसार भारती विधेयक को मंजूरी दी थी, जिससे आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वतंत्र किया गया। तो बनारस, बातें तो बहुत सारी हो गई और बहुत कुछ जानने को मिला, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा

तो दोस्तों, इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। तो दीजिए अपने रेडियो हम सफर ऋचा को अनुमति। आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमारे मेल आईडी pkldaiarvns@gmail.com पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और बनारस की मस्ती में रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से।

0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी

0: प्रति बुरा भावना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों सहित देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉ इफ्तिकार खान शामिल रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में BHU के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और IIT कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
2: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तिकार खान ने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
4: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
5: जो

0: टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा। ये केवल ट्रिपल टी तक सीमित नहीं था, इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रूपये, आज मिलता है 18,000 रूपये। अनुदेशकों का मानदेय अब 17,000 रूपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
1: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उप राज्यपाल डीके जोशी का स्थान लेंगे। उप राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि वह मानते हैं कि हर जिम्मेदारी बड़ी होती है और प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है वह उसे पूरा करेंगे।
2: मैं समझता हूँ कि एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है, अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
1: भारत और नेपाल के बचाव दल का चिले में सुरंग में बचाव अभियान जारी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 आज 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज मंदाकिनी नदी से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे। वहां वह बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करने के बाद जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदे में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहां पर आया हूं वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहां पर बचाव के लिए 48 नाव, एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
1: उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों में पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन 3 विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगवती देई पहाड़ी में कल स्टोन क्रशर में ब्लास्ट के दौरान एक कमरा ढह गया जिसमें दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई।

मरने वाले सभी चार मजदूर सोनभद्र जिले के रहने वाले थे। वहां के जिलाधिकारी ने दुर्घटना के कारण की जानकारी के लिए सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। उधर कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के घोकपुर गांव में कल यमुना नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो जाने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के पांच शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए विदुषी गंगूबाई हंगल का शास्त्रीय गायन, राग है भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी गंगूबाई हंगल का शास्त्रीय गायन, राग था भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता

0: करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
1: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो आदेश देता है, वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
6: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए

0: लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200

0: काबू एआई एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार. पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत. ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग. नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर एआई की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है. पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई. मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान. पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं. चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें.
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील. भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों. भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया. नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे. और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
3: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं. अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें.
2: मिस्टर मोदी सेड इंडियाज 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट्स इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
3: Desh ki defense manufacturing apne all-time high par hai. आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है. 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे. आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.
2: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
3: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे आत्मनिर्भर भी बनाए।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 100 साल तकरीबा से खिताब किया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की खसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की झीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओ नवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स समिट मुनाकिद होगा। इस दो रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो पिछली नस्लों से भी बड़े ख्वाब देखें और आलमी मियार की ऐसी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करें जो दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत रखती हों। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारतीय अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क़यादत कर रहे हैं तो फिर भारतीयों की कायम करदा कंपनियाँ दुनिया की क़यादत क्यों नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की 100 साल तकरीबा से खिताब कर रहे थे।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान भारत की 7.8% की सैमाही शरह तरक्की इसकी इक्तसादी मजबूती की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पॉलिसी मफलूज होने की सूरत हाल से तेज और फाल पॉलिसी तक एक तवील सफर तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बनते हुए देख रही है। जनाब मोदी ने इत्तला दी कि स्मार्टफोन की बरामदात अब 2.5 लाख करोड़ रुपये से तजावुज कर गई है, जबकि घरेलू दिफाई साजो सामान की पैदावार तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की अब तक की आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है।
1: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान तलबा की कई नस्ल को सीखने, तरक्की करने और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के मौके फराहम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कॉलेज ने गुज़िश्ता बरसों में तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना नुमाया मकाम बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग उत्तहसील थे। उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग उत्तहसील तलबा ने फन और सकाफत से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा।

0: एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कॉलेज और मुल्क के तालीमी शोबे दोनों के 100 साल मुकम्मल होने के संग मील की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कॉलेज के बानी श्रीराम को खिराज अकीदत पेश किया और उनके देरपा विजन के सामने सर तस्लीम खम किया। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गुज़िश्ता बरसों के दौरान अपने आला मेयार को बरकरार रखने के लिए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज भारत वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में हुनरमंद इंसानी वसाइल की ज़रूरत है। वजीर तालीम ने इसे मुल्क की नौजवान आबादी के लिए एक मौका करार दिया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा का अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तकरर किया गया है। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल डी के जोशी की जगह लेंगे, जो 8 अक्टूबर 2017 से अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। 62 साल डॉक्टर शर्मा इससे पहले उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला भी रह चुके हैं। उनकी राज्यसभा की मुद्दतकार इस साल 25 नवंबर को खत्म होनी थी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर शर्मा के तकरर का इतलाक उनके जरिए ओहदा संभालने की तारीख से होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत ने जीराम वादी नक्सली हमले में सभी 10 मुलजिमीन को मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार करार दिया है। इस मामले में कुल 11 मुलजिमीन के खिलाफ केस चलाया गया था, जिसमें से एक मुलजिम की दौरान समाअत मौत हो गई। अदालत ने दो खवातीन समेत सभी 10 मुलजिमीन को 29 लोगों को कत्ल करने और दीगर 15 अफराद को कत्ल करने की कोशिश का कसूरवार करार दिया। अदालत ने सजा की मुद्दत का फैसला 16 सितंबर के लिए महफूज कर लिया है। मई 2013 में माओ नवाजों ने जीराम वादी में कांग्रेस रहनुमाओं के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही गोलीबारी में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को हो रहे ब्रिक्स समिट के तनाजुर में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा आई ब्रिक्स समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ये दो रोजा समिट 21 ब्रिक्स रुकन रियासतों और साझेदार मुल्कों के खुद मुख्तार सरमाए को काबिल एतबार बुनियादी ढांचे, तवानाई और डिजिटल सलाहियत प्रोजेक्टों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद मुख्तार फंड्स, पेंशनर फंड्स और आई ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रही प्राइवेट कंपनियां मिलकर 1 खरब अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी रखती हैं। इस दौरान ब्रिक्स मईशतों में सरहद पार सरमायाकारी, डॉलर के अलावा दीगर करेंसियों में तस्फीए और अदायगी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये समिट ऐसे अहम वक्त पर मुनक़िद हो रहा है जब ब्रिक्स मईशतें तिजारत के तरीक़ेकार को बदलने, अमरीकी महसूलात के दबाव और डॉलर में अदायगी की ज़्यादा लागत से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत साल 2026 की ब्रिक्स अदालत के तहत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेज़बानी करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल रात 3 रोज़ा दौरे पर गोवा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो मगरबी इलाकाई काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आज वो वजारत दाखिला की एक मीटिंग की सदारत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और बीजेपी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जनाब अमित शाह आज अपनी मसरूफियत का आगाज गोवा से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लेने की मीटिंग के साथ करेंगे। वो बीजेपी के नए तामीर करदा रियासती दफ्तर अटल भवन के इफ्तिताह से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब शाह आज पार्टी की रियासती कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। उनकी कल की मसरूफियात में मगरबी इलाकाई काउंसिल की मीटिंग और गोवा पुलिस को सदर का पुलिस कलर पेश किया जाना शामिल है। पंजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मुनशिया से मुतालिक इंजबाती इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने नई दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली और गलत लेबल वाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम के खिलाफ मरबूत कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गलत लेबल वाली और जाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही के लिए मुसलसल निगरानी कर रही है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जब भी किसी मुजरमाना हरकत या सरगर्मी से मुतालिक कोई इतला सामने आती है तो दवाओं के मेयारात को कंट्रोल करने की मरकजी तंजीम

0: श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब किया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की खसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की जीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओनवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स समिट मुनाकिद होगा। इस दो रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वज़राए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, सुनेंगे कार्यक्रम मधुरमा इस संदेश के बाद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं। सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज बात करते हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक राकेश रोशन की। आज है इनका जन्मदिन, जो कि 6 सितंबर 1949 मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। तो आज की प्लेलिस्ट होगी कुछ इनके फिल्मों के गाए गीतों के नाम।

राकेश रोशन प्रसिद्ध संगीतकार रोशन लाल नागराज के बेटे और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक राजेश रोशन के भाई हैं। इनका विवाह पिंकी रोशन से हुआ है और इनके दो बच्चे हैं, अभिनेता ऋतिक रोशन और बेटी सुनैना। 1970 और 1980 के दशक में 84 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। एक अभिनेता के रूप में वे मुख्य रूप से बड़े बजट की फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।

राकेश रोशन अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से की थी। उन्होंने खट्टा मीठा, खूबसूरत, तीसरी आंख जैसी कई और कामचोर जैसी कई फिल्मों में मुख्य और

1987 के से उन्होंने के अक्षर से शुरू होने वाले शीर्षकों वाली फिल्मों में निर्देशन के लिए ख्याति प्राप्त की। एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके काम में एक्शन ड्रामा खुदगर्ज, 1987 रिवेंज ड्रामा थ्रिलर खून भरी मांग

1988, एक्शन कॉमेडी किशन कन्हैया 1990, मेलो ड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन 1995, म्यूजिक रोमांटिक थ्रिलर का होना प्यार है 2000 में, साइंस फिक्शन कोई मिल गया 2003 में, इसके सीक्वल सुपर हीरो क्रिश फिल्म श्रृंखला में शामिल है। 2006 से 13 तक उन्होंने कहो ना प्यार है और कोई मिल गया के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।

2025 में नेटफ्लिक्स ने द रोशंस नामक 4 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की। ये डॉक्यूमेंट्री संगीतकार रोशन लाल नागराज से लेकर उनके बेटे राकेश रोशन और राजेश रोशन और अभिनेता ऋतिक रोशन तक कलात्मक विरासत का पता लगाती है। ये दर्शाती है कि कैसे परिवार के रचनात्मक योगदान ने मुख्यधारा के बॉलीवुड संगीत और सिनेमा को आकार देने में मदद की। तो आज इनके जन्मदिन पर इनको ढेरों शुभकामनाओं के साथ इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की मधुरिमा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: लखनऊ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के साथ अन्य संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह सर। सर, आकाशवाणी लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आप।
2: सर, जनपद में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी संबंध में जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें सरकारी अस्पतालों में जांच, उपचार और दवाओं को लेकर के क्या व्यवस्था की गई?
3: पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू है क्या। ये कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इस इन्फ्लुएंजा ए टाइप इसका कॉजेटिव वायरस है, जो RNA वायरस। ये 2009 में इसको वायरस का नाम स्वाइन फ्लू पड़ा। पहले इसको RNA इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोला जाता था। इसका स्ट्रेन H1N1 है। इस समय 2009 के बाद से ये वायरस पैंडेमिक हो गया है। ये वायरस हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, लेकिन हर आदमी को इससे घबराने या चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जिनको गंभीर बीमारियों से पीड़ित या HIV इन्फेक्शन है या लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे ट्रीटमेंट वो चल रहे हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, किन्हीं भी कारणों से उनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को विशेष प्रिकॉशन एहतियात लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सलाह मैं ये देना चाहूँगा जो अति गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको अपनी जो पहले से दवाएं चल रही हैं उन दवाओं को यथावत अपने डॉक्टर की सलाह पे लेते रहेंगे। और अगर उनको सर्दी जुखाम जैसा कुछ लक्षण लग रहा है तो अपने उन्हीं डॉक्टर से या किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक से सलाह लेंगे। सरकारी अस्पतालों में इनकी जांचें और दवाएं बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क हैं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं और हमारी CSCs हैं 20, वहां पे इनकी जांच की और दवाओं की भी व्यवस्था है। तो हम अपने नगर वासियों से और जनपद वासियों से ये अपेक्षा करते हैं सही जगह सही सलाह लें और सही उपचार करें।
2: सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक तेजी आती तो उसको लेकर के क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया?
3: हमारे यहाँ लखनऊ में जनवरी से अब तक लगभग 119 मामले आए हैं जनवरी से लेके अब तक। तो अचानक तेजी कहना उचित नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल बरसात के मौसम में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो उसी क्रम में इन्फ्लुएंजा भी इस समय जो H1N1 है उसी रूप में है। इस समय का जो स्वाइन फ्लू या H1N1 या इन्फ्लुएंजा ए, ये तीनों नाम उसी के हैं, फैला हुआ है, एक कॉमन फ्लू जैसा ही है। इससे बिल्कुल भी घबराने या डरने की बात नहीं है। अगर इनको लक्षणों के, भारत सरकार ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है, उसमें इस बीमारी के लक्षणों के आधार पे कैटेगराइज किया

0: गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी वन, कैटेगरी बी टू एंड कैटेगरी सी। इसमें कैटेगरी ए एंड बी वन में किसी भी तरह का कोई दवा केवल पैरासीटामॉल एंड बी कम्प्लेक्स के अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बी टू कैटेगरी में एसल्टामीन या लेना है 75 mg या अकॉर्डिंग टू द वेट अन्य दवाओं के साथ। कैटेगरी सी में, कैटेगरी सी उनको बोला जाता है जिनको सांस की दिक्कत है, बहुत उल्टी हो रही है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं है, बेचैनी हो रही है, ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाता है। अभी तक हमारे लखनऊ में कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से ही लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि अगर पहले से इम्यूनिटी लो है, लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें छोटा सा बीमारी या वायरस भी बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम अपने नगर वासियों और जनपद वासियों से उम्मीद करते हैं, विशेषकर जो श्रेणी मैंने बताया हूँ जो रिस्क जोन में है, और उनको पहले से जो भी एहतियात या दवाएं उनकी चल रही हैं उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से सलाह मशविरा जरूर करें, इस समय लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं दवा नियमित ले रहे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रोफाइल, हार्ट की जांचें सब हमारा नॉर्मल है, तो H1N1 पॉजिटिव होने के बाद भी भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा, कोई गलत अनहोनी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।
1: सर, जैसा कि आपने बताया कि स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू वायरस की बीमारी है, इसी से मिलती जुलती बीमारी कोरोना भी थी, क्या पुष्टि हुई है कि कोरोना के भी कुछ मरीज पाए गए हैं, या दोनों में कैसे अंतर कर सकता है?
0: जैसा मैंने अब बताया कि ये 2009 में आउटब्रेक हुआ था, उसमें बहुत तेजी से फैला था, नया वायरस था उस समय, उसी तरह से पैंडेमिक हो गया, इस समय हमारे वातावरण में रह रहा है। उसी तरह से कोरोना 2021 में आया था, उस समय भी कोरोना की दो स्ट्रेन पहले से ही पैंडेमिक थी, 3 सालों में हर साल वो कोरोना का स्ट्रेन बदला। उसी तरह इस समय भी कोरोना के कुछ स्ट्रेन हमारे इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो वाला 2021 वाला कोरोना हो गया। तो इसमें भी प्रिकॉशन वही ही लेने हैं जो हम H1N1 के लिए ले रहे हैं, जो हम इन्फ्लुएंजा के लिए ले रहे हैं, प्रिकॉशन वही है। अभी हम प्रिकॉशन पे हम बात करेंगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन अभी प्रिकॉशन कोरोना भी है तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
1: सर, नए और संभावित मामलों को लेकर के स्वाइन फ्लू के या कोरोना के अस्पतालों में क्या अग्रिम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ऑक्सीजन की, बेड की, दवाओं की?
0: हमारे यहाँ लखनऊ में 10 जिला चिकित्सालयों में और मेडिकल कॉलेज KGMU, SGPGI, RML में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। कुल मिला के लखनऊ में अभी लगभग 60 बेड आरक्षित है, वहाँ पर जांच भी हो रही है और दवाएं भी हैं। हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालयों की बात करें तो हमारे 12 बेड सिविल हॉस्पिटल श्यामा प्रसाद मुखर्जी में और 8 बेड बलरामपुर हॉस्पिटल में, 10 बेड लोक बंधु में, 6 बेड RLB में और करीब 8 बेड RSM में। तो बेड आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन भर्ती उन्हीं को किया जाएगा जो कैटेगरी सी में आएंगे और उन्हीं मरीजों का H1N1 जांच कराना, बाकी अन्य जो उससे लोअर कैटेगरी हैं उनको अन्य बीमारियों के चलते तो भर्ती हम कर सकते हैं, लेकिन H1N1 के चलते भर्ती नहीं करें।
1: सर, बारिश का मौसम है, जल भराव की भी समस्याएं कुछ हो रही है, इस बीच में जो है डेंगू के भी मामले बढ़ते हैं जैसे और साल की तरह इस साल बीते हैं, उसको लेकर क्या योजना है? और अभी सरकार ने टीके की बात की थी डेंगू की, उसकी उपलब्धता क्या है इसके बारे में?
0: बरसात के मौसम में जैसा कि हम लोग बात किए हैं अभी, मच्छर भी बहुत तेजी से फैलते हैं, जहाँ भी जल भराव रहेगा वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन हम लोग भाग्यशाली रहे हैं, पिछले वर्ष जो था उसके विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी कम डेंगू के केसेज, जो चिकनगुनिया के केसेज हुए वहाँ पे। इस साल भी हम अभी तक डेंगू के केसेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पिछले साल की तुलना में करीब करीब लगभग बराबर, थोड़ा सा 2-4 केस बढ़े हुए हैं, लेकिन डेंगू डेंगू के लिए भी हम लोगों ने जिला चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किए गए हैं। अगर कोई ऐसा गंभीर बीमारी से पीड़ित आएगा तो भर्ती किया जाएगा। तो डेंगू का भी इलाज यही है कि लोग समय से अवेयर रहें, सही जगह इलाज कराएं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं। तो

0: उन चिकित्सालयों का लाभ उठाए।
1: सर, जो केंद्र सरकार ने टीके की बात की थी क्यूडेंगा डेंगू को लेकर, उसकी क्या उपलब्धता है? क्या मतलब वो लखनऊ में उपलब्ध हो गया है?
0: केंद्र सरकार ने जो डेंगू के टीके की बात किया है वो अभी पब्लिक के लिए अभी रोल आउट नहीं, रोल आउट होगा तो हम लोग जरूर लगाए।
1: सर, लखनऊ में बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से गंभीर मरीज आते हैं इलाज करके, ऐसे मरीजों की जो है बढ़ती हुई संख्या को देख करके अस्पतालों में जो जांच बेड या आपातकालीन सेवाओं की सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या तैयारी की गई?
0: लखनऊ इधर अगल बगल के कम से कम 25 जिलों से मरीज आते हैं। यहाँ पर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान है, जैसे SGPGI में तो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, KGMU में भी दूसरे प्रदेशों से भी, अपने कम से कम आधा प्रदेश KGMU में आता है, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। उनके वो बीमारियों के हिसाब से हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो हैं, चिकित्सालय जो हैं, सतर्क अलर्ट मोड में ट्रीटमेंट उनके यथोचित किया जाता है।
1: सर, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के बीच की संक्रामक रोगों की निगरानी या मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए कोई व्यवस्था या सेटअप तैयार किया गया है?
0: हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो भी संक्रामक रोग हैं उनके बीमारियों को एक रूपता और समन्वय और मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है UDSP। जितने भी सरकारी चिकित्सालय या पैथोलॉजी हैं, किसी के यहाँ अगर संक्रामक रोगों से संबंधित कोई जांच पॉजिटिव आता है तो UDSP पोर्टल पे अपलोड करना कंपलसरी है। तो उस पे अपलोड करता है तो हम लोगों को रिपोर्ट डेली मिल जाती है कि कितने और कहां पर हैं।
1: सर, डेंगू, स्वाइन फ्लू या अन्य संक्रामक बीमारियों के मामलों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को कितना मजबूत किया गया और संदिग्ध मामलों की सूचना विभाग तक कैसे पहुंचती?
0: इस बारे में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ फीवर के या संक्रामक रोगों के जितने भी बीमारियां हैं, अगर कोई उसमें पॉजिटिव आता है तो जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर है हमारे यहाँ, और UDSP पोर्टल है, उस पे जो भी अगर कोई संक्रामक रोग से ग्रसित पाया जाता है तो उस टीम जाती है, उसको निवारक कार्रवाई की जाती है वहाँ पे।
1: सर, लखनऊ की जनता को मौसमी और संक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए आप क्या प्रमुख सावधानियां और क्या सलाह देंगे और कैसे लक्षण उत्पन्न कर उनको तैयार रहना चाहिए कि हमें अब जांच करा लेनी चाहिए? और
0: अभी सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 / स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके पे मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ। जो हम लोग 4 साल पहले कोरोना के समय जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे कफ एटिकेट, खांसते और छींकते समय मुंह पे कपड़ा लगाना, वो हमने आदत सीखा था, फिर से उसको हमें आदत में लाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक हाथ का डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो ना जाएं, शेक हैंड ना करें, गुनगुना चीज खाएं और पिएं। अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो 3-4 दिन 5 दिन घर में रहें या जो गंभीर पीड़ित लोग हैं उनसे डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो उनको। और डेंगू के लिए हम कहना चाहेंगे, हमें अपने जनपद वासियों को अपने अगल बगल घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ना पानी इकट्ठा होगा ना मच्छर पैदा होगा, ना तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होगा। तो हम लोग सभी जनपदवासी ये प्रण कर लें कि अपने घर में और घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे तो हम लोग डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बिल्कुल बचे रहेंगे।
1: आम जनता दोनों में जैसे अगर किसी को होता तो वो अंतर कैसे कर पाए फ्लू के सिम्टम और डेंगू के सिम्टम, तो वो कैसे बचाव उससे करें और तुरंत जांच करा लें?
0: डेंगू के सिम्टम होंगे हाई ग्रेड फीवर होगा और जोड़ों में मसल्स में पेन होगा, रिट्रोबल्बर आंख के पीछे दर्द होगा, उसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को। और कॉमन फ्लू में इतना सीवियरिटी फीवर की नहीं होती है, कॉमन फ्लू में गले में खराश, हल्का बुखार और उल्टी मिचली भी आ सकती है, जो कि डेंगू में नहीं होगा।
1: सर, आखिरी में सवाल यह है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या प्राथमिकताएं हैं और आगामी महीनों में जो तैयारियां हैं उसके बारे में, कुछ उपलब्धियों के बारे में?
0: अभी हमारे जो लखनऊ में हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम को पूरा अलर्ट मोड में रखा हुआ है। अभी H1N1 डेंगू सबके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ हर CHC पे

0: लोगों का जांच होने के लिए वहाँ पे कार्ड टेस्ट हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएंगे, फिर कन्फर्मेटरी के लिए एलाइजा टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला स्तरीय पे उसकी जांचें होती हैं। H1N1 के लिए हम वो लोग वहाँ पे थ्रोट स्वैब लेके VTM से मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे रियल टाइम PCR उसका कन्फर्मेटरी जाँच है, H1N1 का रियल टाइम PCR ही कन्फर्मेटरी जाँच है, वो हमारे मेडिकल कॉलेज SGPGI और राम मनोहर लोहिया में कंफर्म होते हैं, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। बाकी हमारी जो डेंगू के लिए और H1N1 के लिए दवाएं हर जिला चिकित्सालयों में और हर जगह उपलब्ध।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय दे।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और

0: H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही के एक मकाले से जिसका उन्वान है बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान का किरदार, और इसके बाद कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब खुर्शीद ज़फ़र हल्लौरी। उर्दू ज़बान मुख्तलिफ मज़ाहिब, ख़त्तों और इस पस मंज़र के हामिल अफराद के दरमियान खलीज मिटाकर बाहमी इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देती चली आ रही है। उर्दू ज़बान बर्रे सग़ीर के तूल अर्ज़ में अवाम के दरमियान बाहमी राबते का सबसे आसान और मुअस्सर ज़रिया है। ये ज़बान मुख्तलिफ सक़ाफ़तों और बोलियों के मिलाप से बनी है जो माशरे में रवादारी और मेल जोल का पैगाम देती है। उर्दू अदब, शायरी और अफसानवी अदब में हमेशा अमन, इंसानियत, मोहब्बत और इत्तेहाद की बातें की गई हैं। हमारे शोरा ने हमेशा ये कोशिश की कि वो ज़बान जिसके खमीर में इब्तिदा से ही मजहबी रवादारी के साथ साथ इत्तेहाद और अमन का पैगाम छिपा हुआ था उसे लोगों तक पहुँचाया जाए। ये किसी एक मजहब या किसी एक खित्ते की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू ज़बान की तारीखी खिदमात और तरवीज के बारे में उर्दू अदीबों और शायरों ने हमेशा से ही अमन और मसावात की गुफ्तगू की है। जहां नफरत और तोहम परस्ती थी वहां पर उन्होंने अमन मसावात और मोहब्बत के चराग रोशन किए हैं। कभी मीर तकी मीर ने यह कहा था, उसके फरोगे हुस्न से चमके है सब में नूर, वो शम्मे हरम हो के दिया सोमनाथ का। तो ज़फ़र अली ख़ान ये फरमा रहे हैं, नाकूस से गरज है ना मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। तो उर्दू शायरों और अदीबों ने हमेशा मोहब्बत और मसावात की गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं इसी पस मंज़र में जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान का किरदार।
3: अहले इल्म इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा बाहमी मेल जोल और इत्तेहाद व इत्तेफाक से हुई। मुख्तलिफ मजहब व कल्चर के मानने वाले, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले और मुख्तलिफ पेशों के अफराद अरसे से एक मरकज पर आने की तमन्ना रखते थे। उर्दू उसी ख्वाहिश का समरा है। चूँकि ये ज़बान कौमी यकजहती के पैदावार है और उसका बीज मुश्तरक तहजीब में बोया गया है, इसलिए उसमें इब्तदाही से रंग बिरंगी तहजीब व माशरत की झलक मिलती है। उसकी इन्हीं खूबियों के सबब कृष्णचंद ये कहने पर मजबूर हुए, उर्दू अदब शुरू ही से एक मुश्तरक हिंद आर्यायी तहजीब और कल्चर का गहवारा रहा है। उसकी तरवीज व इशात में हिंदुओं और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। उसने अपने दायरे में हर मजहब व मिल्लत, हर रंग व नस्ल के अफराद के महसूसात और जज्बात को समो कर उन्हें ऐसा अदबी रंग रूप अता किया है जिससे उस ज़बान के अदब और शायरी पर बाहमी मेल जोल, रवादारी, इत्तेहाद, महब्बत, अख़ुवत और कौमी यकजहती के जज्बों की गहरी छाप पड़ चुकी है। इन्हीं अनासिर की मौजूदगी ने उर्दू ज़बान के अदब को एक सेकुलर मिजाज अता किया है जो सारे हिंदुस्तानी अवाम के जमहूरी जज्बे से हम आहंग है। दिशंबरनाथ पांडे ने बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान के किरदार का तस्करा इंतहाई हकीकत आमेज़ लबो लहजे में इस तरह किया है, उर्दू तो इसी ज़मीन की पैदावार है जिसे गंगा जमुना की नदियाँ सैराब करती हैं। ये सही है कि मुसलमान सूफियों, दरवेशों और शायरों ने उर्दू का सिंगार किया, लेकिन सैकड़ों हिंदू अदीबों ने भी उर्दू को संवारने में हिस्सा लिया। अगर उर्दू में इस

0: जो किसी गुलबतन का जिक्र मतला गजल के वास्ते शायान शान ढूंढ, मतला गजल के वास्ते शायान शान ढूंढ। अर्ज किया है कि जो जहनो दिल को ताजा गुलाबों से सजा दे, जो जहनो दिल को ताजा गुलाबों से सजा दे, तजीन गुलसिता को वही बाग बाँ ढूंढ, तजीन गुलसिता को वही बाग बाँ ढूंढ। गजल का मतलब समाप्त फरमाए। किस्मत से खेलते हुए सैयारगां की चोट, किस्मत से खेलते हुए सैयारगां की चोट, कब तक सहेंगे अहले जमीं आसमां की चोट, कब तक सहेंगे अहले जमीं आसमां की चोट। एहसास के जजीरों में बरपा है जलजला, एहसास के जजीरों में बरपा है जलजला, है एक दिले गरीब में सारे जहां की चोट, है एक दिले गरीब में सारे जहां की चोट। और तरके ताल्लुकात की बातें न कीजिए, तरके ताल्लुकात की बातें न कीजिए, पड़ती है गोशे कल्ब पे तेगे जुबां की चोट, पड़ती है तेगे कल्ब पे तेगे जुबां की चोट। ताजिर है नफरतों के जो मुजरिम है दोस्त के, ताजिर है नफरतों के जो मुजरिम है देश के, महसूस क्या करेंगे वो हिंदुस्तान की चोट, महसूस क्या करेंगे वो हिंदुस्तान की चोट। फरहादो कैस से कोई जाकर ये पूछ ले, फरहादो कैस से कोई जाकर ये पूछ ले, फरहत नवाज कितनी है इश्क़े बुता की चोट, फरहत नवाज कितनी है इश्क़े बुता की चोट। मख्तार है कि जीने का हौसला मुझे देती रही जफर, जीने का हौसला मुझे देती रही जफर, हमदर्दियों के साथ गमे दोस्ता की चोट, हमदर्दियों के साथ गमे दोस्ता की चोट।
1: अभी आप जनाब खुर्शीद जफर हल्लौरी से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। और आइए सामईन, प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए वजीर आजम की एक खास स्कीम सीखो और कमाओ, इसके बारे में चंद बातें। सीखो और कमाओ हुकूमत हिंद की अकलीती वजारत की जानिब से एक खास और अहम स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। सीखो और कमाओ स्कीम का बुनियादी मकसद ये है कि इस स्कीम के तहत अकलियती बिरादरियों के बेरोजगार नौजवानों और तालिब इल्मों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, ताकि वह खुद कफील और खुद रोजगार बन जाएं। इस स्कीम का मकसद ये है कि 14 से 35 साल की उम्र के अकलियती नौजवानों, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, इन बिरादरियों के बेरोजगार नौजवानों को जदीद सनअतों जैसे आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में तरबियत फराहम करा के उन्हें रोजगार के काबिल बनाया जा सके। ये खास स्कीम हुकूमत हिंद की जानिब से बेरोजगार अकलियती नौजवानों को मुफ्त तरबियत यानी ट्रेनिंग फराहम करती है और ट्रेनिंग के दौरान वजीफा भी देती है और ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर उनकी प्लेसमेंट में भी मददगार मुआविन साबित होती है। सीखो और कमाओ स्कीम में अकलीती बिरादरियों के बेरोजगार नौजवानों, बिलखसूस ख्वातीन को खसूसी तरजीह दी जाती है। सीखो और कमाओ स्कीम में ट्रेनिंग की तकमील पर हुकूमत हिंद की तरफ से तस्लीम शुदा यानी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दी जाती है, जो उनकी मुलाजमत में मददगार साबित होती है। इस स्कीम का मकसद जदीद और रवायती तजारतों में अकलियती नौजवानों की महारत को उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर मौजूदा माशी रुझानात और मार्केट की सलाहियतों के मुताबिक अपग्रेड करना है। सामने ये तो थी चंद बातें वजीर आजम के जरिए चलाई जाने वाली अकलियतों के फलाह बहबूद के लिए तरक्याती स्कीमों के हवाले से। आज हम बात कर रहे थे सीखो और कमाओ योजना के बारे में। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। हम आकाश

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं विष्णु यादव। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं बिरहा।

निर्गुण के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे विष्णु यादव। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं।

0: बच्चों सिखाने वाले हैं श्री कुमरन तंबी इस गीत को लिखे हैं। संगीतकार है श्रीमती श्यामला स्वामी। इस गीत में केरला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस गीत को श्रीमती श्यामला स्वामी सिखाएंगी। लिखने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। श्यामला जी आप बताइए।
1: சிங்கப்பூ
2: வல்லம்
1: துளும்பி
2: வல்லம்
1: துள்ளி துள்ளி
2: துள்ளி துள்ளி.

0: बच्चों अब गाना समझ लिए ना, घर में अभ्यास कर लीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में मलयालम सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
2: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं बरखा फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला गीत है फिल्म छाया से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

मेरे सनम फिल्म से अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। मजरूह के इस गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का। आइए सुनते हैं ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

0: मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म गंगा जमुना से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी के इस गीत को संगीत दिया है नौशाद ने।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म के गीत को अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम में आखिर में हम आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से ये गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है जयदेव का।

हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। आइए सुने अब हमारे बच्चों का कार्यक्रम बाल संग।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी।
2: दीदी
0: आज तो स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हैं और खूब सुंदर दिख रहे हैं।
2: ये नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं ना, एकदम बगिया के फूलों जैसे हैं ना, और दिख भी खूब सुंदर रहे हैं। और आज बहुत सारी बातें भी करेंगे आज हम इन बच्चों से।
0: बातें तो करेंगे, और ये सभी बच्चे अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां भी लेकर आए हैं और हमें सुनाने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं। तो चलिए हम इन बच्चों से जानते हैं कि इनका क्या नाम है।
3: दिविशतन, अयांशी मेहरा, अनिदन महेश्वरी,
4: दीपांशी सोमकर, आया मित्तल।
0: अरे वाह, तो ये जो पांच बच्चे हमारे आगे बैठे हैं, ये आज हमें कुछ सुनाएंगे दीदी।
2: बच्चों आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: भजन
0: सुनाएंगे। किसका भजन सुनाएंगे?
3: हनुमान जी का।
0: चलिए सुनते हैं ये भजन।

0: अरे वाह दीदी, बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा भजन सुनाया।
1: हाँ, और काफी सुंदर सुनाया है ना भजन दीदी। लेकिन देखिए, यहाँ और भी बच्चे हैं जो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा और कब मैं भी कुछ सुनाऊंगी दीदी को, है ना।
0: दीदी, भाई हमारे सामने शिवाय बैठे हैं, वो भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं।
1: कहना नहीं, बल्कि वो तो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं दीदी।
0: तो चलिए सुनते हैं कि शिवाय हमें क्या सुना रहे हैं।
2: राग भोपाली।
0: सुनाइए।

0: अरे वाह शिवाय, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। अब अगला बच्चा कौन है?
1: हमारे सामने ही तो तीन प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं। आइए जानते हैं कि इन बच्चियों का क्या नाम है
2: कृतुषा मालू,
1: और आपका
2: अद्रिका
1: और आपका।
2: नागर, वरन्या दीक्षित।
0: आप हमें क्या सुनाने वाली हैं?
2: कजरी
0: कजरी। तो चलिए सुनाइए।

0: घेरी घेरी आई सावन की बदरिया ना। दीदी, सावन भादों का महीना और कजरी सुनी ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: इस मौसम में कजरी लोग सुनते भी हैं और झूलों पर बैठकर गाते भी हैं।
1: भाई सबसे बड़ी बात दीदी ये कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको सिखाया कितना अच्छा गया है।
0: और ये कितना अच्छा गा रहे हैं, इनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है।
1: तो बच्चों, आपकी टीचर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है ना?
2: हाँ,
1: अच्छा लगता है। आप सब अपने टीचर्स की बात मानते हैं और अपने मम्मी पापा की बातें?
0: अपने घर में पापा मम्मी की बातें मानते हो?
3: हाँ दीदी।
0: विवेकता, आप ये बताइए कि आप स्कूल जाती हैं?
4: हाँ दीदी।
0: अच्छा, स्कूल में आपको टीचर आपकी जो भी चीजें बोलती हैं करने के लिए, आप उसको करती हैं?
4: हाँ दीदी।
0: घर से लंच लेके जाती हैं?
4: हाँ दीदी।
0: आपको क्या खाना बहुत पसंद है?
4: सैंडविच।
0: तो सैंडविच भी तो हेल्दी होता है ना, अगर उसे हम घर पे अच्छे से बनाएं तो? घर पे बना के आपको मम्मी देती हैं?
4: हाँ दीदी।
0: बाहर का सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खाना, घर में बनवा के अगर आप अच्छे से खाते हैं सैंडविच, तो वो सैंडविच हेल्दी भी होता है, उसमें तरह तरह की सब्जियां प्रयोग होती हैं, है ना?
4: हाँ,
0: वो आपको अच्छा लगता है?
4: हाँ।
1: आपको और क्या क्या अच्छा लगता है?
4: गाना गाना।
0: और घर में आप अपने मम्मी की बात मानती हैं?
4: हाँ दीदी।
0: मम्मी आपसे क्या क्या करने को बोलती हैं?
4: समय पे खाने को।
0: हाँ।
4: और पढ़ाई करने को।
0: पढ़ाई करने को बोलती है। आप स्कूल से आते हो तो अपनी यूनिफॉर्म्स यानी अपनी ड्रेस को सही से टांगते हो या ऐसे ही रख देते हो?
4: दीदी, मैं सही से टांगती हूँ।
0: सही से टांगते हो, इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हो, मम्मी की बात मानते भी हो, है ना?
1: और बेटा आप बताओ, और आपके घर में कौन कौन है?
3: मम्मी पापा दादी दादू चाची चाचू।
1: मतलब

0: बहुत बड़ा परिवार है आपका, है ना? तो आप सबकी बात मानते हैं ना?
1: अच्छा ये बताइए कि आप सभी ने अपने पास एक एक गुल्लक तो रखा है ना? गुल्लक में पैसे तो डालते हैं? पैसे आपको जो मिलते हैं क्या आप पूरे पैसे खर्च कर देते हैं? कुछ पैसे बचा के गुल्लक में डालते भी हैं? यानी बचत की आदत है आप सबको। दीदी बचत की आदत होना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को शुरू से सिखाएं कि उनको अपने पैसों को बचाना चाहिए तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं और खुशी-खुशी अपने छोटे से गुल्लक में पैसे जमा करते हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए अभी क्या ज़रूरी है, किताबें या खिलौने। वैसे बच्चे हैं तो खिलौने भी ज़रूरी ही है दीदी, है ना? लेकिन कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है और कौन सी चीज़ सिर्फ शौक है, तो
1: इसमें आपको अंतर करना भी आना चाहिए, है ना? कि समय पर आपको खेलना भी है और समय पर आपको पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई करते हैं?
0: आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है
2: हाँ दीदी।
0: तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लेते हैं कि खुद से करते हैं?
2: खुद से करते हैं।
0: अरे वाह, खुद से आपको समझ में आता है?
2: हाँ दीदी।
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
1: अरे भाई कुछ कठिन सवाल होते होंगे तो उसको तो पूछते होंगे ना मम्मी से।
0: तो फिर यदि मम्मी की भी हेल्प लेते हैं, है ना? तो दीदी चलिए अब जानते हैं कि विवेकता हमें वो कुछ सुनाने के लिए बैठी थी ना।
5: विवेकता आप हमें क्या सुनाने वाली हैं?
6: राम जी का भजन।
0: राम जी का भजन, चलिए सुनाइए।

0: एकता ने तो बहुत अच्छा भजन सुनाया। पूरे जीवन का सार इस भजन में बता दिया है ना?
1: बिल्कुल।
0: दीदी, हमारे सामने एक प्यारी सी बच्ची और बैठी है। आइए जानते हैं कि ये हमें क्या सुनाना चाहती हैं। आपका नाम
1: मेहर रोनियार,
0: और आप हमें क्या सुनाएंगी?
1: राग बाक्षरी।
0: चलिए सुनाइए।

0: अरे वाह मेहर, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है ना दीदी?
1: हाँ दीदी, हम सभी को संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है,
0: भाई
1: तभी
0: वाह,
1: हम सभी स्वस्थ रहेंगे। ये बात हमारे नन्हे साथियों को भी तो पता होनी चाहिए ना।
0: बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे नन्हे साथी है ना, यही आगे चलकर हमारे देश का भविष्य है ना? तो इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो ये कुछ आगे अच्छा कर सकेंगे।
1: तो बच्चों, आप सभी को घर का खाना पसंद है?
0: तो घर के खाने में आपको क्या-क्या पसंद है?
2: दाल चावल,
3: रोटी, अनियन, दाल, राजमा दाल,
2: गत्ते का पुलाव और दही।
1: गट्टे का पुलाव और दही। अरे वाह, ये तो बहुत ही हेल्दी भी होता है दीदी।
0: और दही तो खाना भी चाहिए, खासकर गर्मी के मौसम में। क्योंकि दही में तो सारे मिनरल्स होते हैं, है ना? और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और एक बात बताइए बेटा, आपको क्या पसंद है?
2: दाल चावल,
3: रोटी सब्जी।
1: रोटी सब्जी। तो घर में जो सब्जी बनती है वो आपको पसंद है? हरी सब्जियां खाती हैं आप?
3: हाँ दीदी,
1: कौन कौन सी हरी सब्जी खाती हैं?
3: पालक।
1: पालक पसंद है? और ठीक है, पालक तो पसंद है ना। पालक बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। दीदी, हमारे नन्हे बच्चे जो हैं, इन्हें घर का खाना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये बच्चे स्वस्थ हैं और संतुलित आहार के बारे में ज्यादा कुछ इन्हें बताने की आवश्यकता भी नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि
1: फल
0: इनको तो पहले से ही सारी बातें पता है ना? लेकिन एक बात बताइए बच्चों, कि क्या कभी-कभी आपको बाहर का भी खाना खाना अच्छा लगता है?
2: नहीं दीदी,
3: नहीं दीदी,
2: एकदम भी नहीं दीदी,
0: एकदम भी नहीं।

0: अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दीदी। इन्हें बाहर का भी खाना पसंद नहीं है, तो कभी अगर मन होता है पिज्जा वगैरह खाने का या सैंडविच खाने का तो?
1: मम्मा घर पे बना देती।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: मम्मा बना देती
1: मम्मा।
0: है। बहुत अच्छी बात है।
2: स्कूल में लंच में आप लोग क्या लेके जाना पसंद करते हैं?
1: सैंडविच,
2: और आप?
1: पराठा,
2: और आप?
1: टिक्की।
2: टिक्की। इनका टेस्ट तो कुछ अलग है दीदी, लेकिन अच्छा है। भाई अगर टिक्की, सैंडविच ये सब घर का बना हुआ हो तो खाने में भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नन्हे बच्चों, आप सभी घर के बने हुए खाने को ही खाएं। बाहर जो कुछ भी आपको खाना होता है, चाहे वो पैकेट बंद हो या ऐसे खुला मिल रहा हो, वो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
0: अच्छा, कभी कभी जैसे वो चिप्स वगैरह आते हैं या चॉकलेट्स आती हैं, तो वो खाना अच्छा लगता है? दीदी देखिए, एक और प्यारी सी बच्ची हमारे बीच बैठी हुई है, शायद वो हमें कुछ सुनाना चाह रही है। बेटा आपका नाम क्या है?
3: वरना दीक्षित
2: आप हमें क्या सुनाएंगी?
3: मोटिवेशनल सॉन्ग।
0: अच्छा, मोटिवेशनल सॉन्ग, चलिए सुनाइए तो फिर।

0: मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हौसला बुलंद है तो उन मुश्किलों को दूर करना मामूली सी बात हो जाती है दीदी।
1: बहुत सही बात कही दीदी आपने, और इस प्यारी सी बच्ची ने भी हमें बहुत बड़ी सीख दे दी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, है ना। और अब हमारे बीच एक और नन्ही कलाकार हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
2: सोनम,
1: सोनम। सोनम, आज आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं?
2: मेरी पाठशाला,
1: मेरी पाठशाला। चलिए सुनाइए।
2: मेरी विद्यालय। ज्ञान का उजियारा है, संस्कारों की इस धरती पर हर सपना हमारा है। सुबह सुबह जब घंटी बजे, मन में उमंग भर जाए। गुरुजन हमें सिखाते हैं, जीवन की सही राह दिखाते हैं। पढ़ाई के संग खेलकूद, सबको मिलता मान। अनुशासन, मेहनत, एकता, यही हमारी पहचान। यहाँ हमें सच बोलना और आगे बढ़ना सिखाया। छोटे छोटे कदमों से बड़े सपने दिखलाया। मेरा स्कूल हम सबकी एहसान, पढ़ लिख कर अच्छे बनकर बढ़ाएंगे इसका मान। धन्यवाद।

0: अब तो देखिए घड़ी की सुई भी टिक टिक कर रही है।
1: और हमसे कह रही है कि आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने नए नए नन्हे साथियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दीदी कंचन को
0: और सुखदा को अनुमति।
1: जय
0: जय हिंद
1: हिंद
0: बच्चों।
1: बच्चों।

0: बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मनाही जय बेबी नार झूलनी, हम गवन मनाही जय बेबी नार झूलनी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर, यानी 1242 किलोहर्ट्ज, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
5: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658। आरोग्यम कार्यक्रम में आज का विषय है PCOS की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, प्रस्तुति सहयोग शिखा श्रीवास्तव का, और प्रस्तुतकर्ता दिलीप यादव।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम अपनी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो देखने में अक्सर लोगों को छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे सामान्य समझकर इस पर ध्यान

लिया जाए तो ये महिलाओं के स्वास्थ्य और भविष्य का बहुत बड़ा संकट बन सकती है। अनियमित मासिक धर्म, अचानक बढ़ता वजन, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, गर्भधारण में कठिनाई, ये समस्याएं अगर आपके साथ भी हैं, तो सोचना होगा कि कहीं ये PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ओर संकेत तो नहीं कर रही है। तो क्या इन लक्षणों को पहचाना जा सकता है? इन लक्षणों को कैसे पहचाने, इसके क्या कारण हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे नियंत्रित कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी को। ये स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही पंचकर्म विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत

0: विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी।
0: जैसा कि आज का विषय है PCOS, तो PCOS क्या है ये हमारे श्रोताओं को बताएं और इनके लक्षण क्या है, कैसे समझे कि ये PCOS की समस्या हमें हो रही है।
1: जी, काफी लक्षण आपने पहले ही बता दिए हैं। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म हम देखते हैं तो वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं महिलाओं में, उसकी वजह से जो हमारे एग्स हैं या अंडे हैं वो प्रॉपरली विकसित नहीं हो पाते हैं, और ये जो इम्बैलेंस आता है उनके विकास और पोषण में, उसकी वजह से छोटे छोटे सिस्ट या ग्रंथियां बननी शुरू होती हैं, और जब वो अच्छी खासी मात्रा में बन जाती हैं जिसको कि हम इजीली डिटेक्ट कर सकें, तो फिर वो पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसा उनको टर्म दिया जाता है। तो छोटी गांठें स्त्री बीज को मैच्योर न होने देने के कारण छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और एग्जैक्टली उसका जो एग का प्रॉपर विकास होना चाहिए, हर मंथ में फॉलिकल बढ़ जाना चाहिए, ये नहीं हो पाता इस बीमारी में।
0: अच्छा, तो इस बीमारी की शुरुआत कब से हो सकती है, कब से इस चीज पर ध्यान देना शुरू कर दें बच्चियां या महिलाएं?
1: एक्चुअली आजकल बच्चों में जो पीरियड्स, पहला पीरियड आता है मिनार्की बोलते हैं उसको, उसकी एज काफी कम हो गई है।
0: जी,
1: पहले जो 14-15 साल में होती थी, अब वो 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में हमें देखने को मिलती है, और कई बार ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। तो हम अभिभावकों को ध्यान तो तभी से देना है कि उनका जो साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं है, उस समय उनको किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है। इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ये इसी स्टेज में हो ही जाता है, हम लाइफ के किसी भी स्टेज में, हम जहां पर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हुआ, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो वो एक तरह से जैसे कि भोजन का पाक हो रहा है, उसी तरह से एग का प्रॉपर नरिशमेंट और मैच्योर होना गड़बड़ होता है, और ये हो सकता है।
0: जी,
1: ये समझ।
0: मैडम, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं।
1: जी,
0: हेलो।
2: हाँ जी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: पहाड़िया, अशोक विहार कॉलोनी से श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोन। तो आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्रश्न पूछे।
2: पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि पहले हम लोग पीसीओडी के नाम से जानते थे, फिर पीसीओएस हुआ, फिर पीएमओएस हुआ, तो जरा इसको साधारण भाषा में समझाएं कि हम लोगों के समझ में आ जाए।
1: एक्चुअली जो पीसीओडी है वो इनिशियल फेज होता है, यानी कि ये जो पीसीओएस से पहले की जो स्टेज होती है, जहां पर की बीमारी बहुत एडवांस अवस्था में नहीं पहुंची रहती, तो वहां पर कुछ कुछ बेसिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिंड्रोम पीसीओएस जो है वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये पूरे रोग का एक झुंड बन जाता है। तो जब पीसीओडी प्रोग्रेस करता है आगे, जब वो कई सिस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसको पीसीओएस का नाम दिया जाता है। हालांकि आयुर्वेद में तो कभी भी हम पीसीओडी या पीसीओएस इस तरह की समस्या हम लेते ही नहीं है। जो पीएमओएस है वो एक्चुअली इसका जो कारण है, मतलब पीसीओडी या पीसीओएस होने का जो कारण है, वो हम लोग बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई सिम्टम्स को या सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, और उसके बाद वो इसमें आता है, कन्वर्ट होता है। तो ये पीएमओएस का जो कंसेप्ट है वो अभी लोगों ने लॉन्च किया है, लेकिन हमारे यहाँ, मतलब आयुर्वेद में, ये पॉली इंडोक्राइन, क्योंकि कभी भी यहाँ पर एचपीओ एक्सिस होता है, ठीक है ना, तो कभी भी एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी से ही ये रिलेटेड होगा। पैनक्रियास से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो वो पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, यानी कि कई जो इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्यूरेट टर्म होना चाहिए वो यही होना चाहिए, जो अभी तक जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, मेडिकल साइंस में भी इवोल्यूशन होता है, तो ये टर्म्स धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्चेस होती जाती हैं ये बदलते हैं।
2: जी, जी, बहुत अच्छा। ये हार्मोन डिसबैलेंस,
1: जी,
2: मतलब मेन चीज है कि हार्मोन डिसबैलेंस होता है आदमी महिलाओं।
1: जी जी
2: जी सर। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आजकल जो फर्टिलिटी कम हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी उम्र जो है 70 साल के आसपास है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले का मैं देखता हूँ तो फर्टिलिटी इतनी कम नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल बच्चे, एक बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा हम लोग आशा लगाए रहते हैं बाकी बड़ा टाइम बीत जाता है और जल्दी खुशखबरी नहीं मिलती, तो इसका वजह पीसीओडी मतलब पीएमओएसी

0: एक्चुअली ये हमेशा ऐसा नहीं होता. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं. पीएमओएस इसका एक कारण हो सकता है स्त्रियों की दृष्टि से देखें तो. लेकिन सबसे पहला तो है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, आप परिवार में कितने खुश हैं, ये दोनों की तरफ, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है. मानसिक तौर पर आप कितने खुश हैं, बच्चा लाने के लिए आप कितने उत्सुक हैं आपका, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज से होता है. और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर एक बीमारी को ट्रिगर करती है. तो वो सिर्फ पीएमओएस पर हम इसका को इफेक्ट कर रहा है सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो शादी बहुत देर में हो रही है तो फॉलिकल्स जो है यूजुअली मैच्योर हो जाते हैं.
1: जी,
0: तो अब मैच्योर फॉलिकल्स जो है, मतलब ओवर मैच्योर फॉलिकल्स जो है, वो बहुत अच्छी संतति नहीं प्रोड्यूस कर सकते.
1: तो अगर आप नई लड़कियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि खान पान से लेके और वॉकिंग तक क्या ये रूटीन अपना अपनाएं लोग?
0: बिल्कुल, जो जो सामान्य रूटीन है सबसे पहले तो वो करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं, समय पर उठ जाना है, समय पर सो जाना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, बच्चों को खुश रहना है.
1: बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहिबा को मेरा एक बार और प्रणाम है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, धन्यवाद.
2: प्रणाम. धन्यवाद अनिल जी. डॉक्टर साहिबा, बहुत से लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसा कहती हैं कि मासिक धर्म के दौरान जब दर्द होता है तो उस दर्द के समय में अगर दर्द की दवाएं ले ली जाती हैं तो वही आगे चल के सिस्ट का रूप ले लेती हैं या फाइब्रॉइड का रूप ले लेती हैं, इसके वजह से हम लोगों को पीसीओएस की समस्या होती है. तो ये सत्य है या भ्रांति?
0: नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति है. एक्चुअली पेन किलर का काम दर्द को कम करना है, यहीं तक.
2: जी,
0: पेन किलर्स हैं वो पेन को कम करने के लिए सहायक होती हैं. डायरेक्टली वो आपके हार्मोन्स पर जाकर के इम्बैलेंस करें, इतना नहीं होता.
2: जी,
0: और दूसरी चीज, आप अगर बहुत सीवियर पेन है और आप पेन किलर्स ले भी रहे हैं तो महीने में 2 या 3 पेन किलर लेने पे आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी.
2: जी, क्या मधुमेह रोग अगर किसी को है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ये भी पीसीओएस का कारण बन सकती है?
0: हाँ, स्पेसिफिकली जो मधुमेह है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक टर्म आता है. मतलब हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो शरीर में मतलब वहां से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है.
2: जी.
0: तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है और उसके बाद एक उसका कारण पीसीओडी में कन्वर्ट होना या पीसीओएस में कन्वर्ट होना बिल्कुल है.
2: जी,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रोन है पीसीओएस जैसी समस्याओं के लिए या पीएमओएस जैसी समस्याओं के लिए.
2: जी, तो इसकी चिकित्सा क्या है मैडम?
0: सिर्फ पीसीओएस की अगर बात करें आप, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो जो जो चीजें इसको बढ़ा सकती हैं या पैदा कर सकती हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे तो पहली चीज तो हार्मोनल इम्बैलेंस है. हार्मोनल इम्बैलेंस किन किन कारणों से आ सकता है, चिकित्सा इसी पर डिपेंड करेगी. तो पहली चीज है कि बहुत सारे केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं, काफी हद तक अभी लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि खाना अच्छा होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ केमिकल्स हम सामान्य तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है. छोटे बच्चों को हम बहुत सारा पाउडर और क्रीम और लोशन और ये सारी चीजें हम लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के इफेक्ट करेंगे उसके हार्मोनल सिस्टम को. जो परफ्यूम्स और फ्रेशनर्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है वो भी डायरेक्टली परेशान करता है हार्मोनल सिस्टम को. उसके बाद जो आपने डायबिटीज वाला पूछा प्रश्न, तो काफी जनसंख्या ऐसी है जो प्री डायबिटिक फेज में है. अगर हम रिपोर्ट्स करवाएं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर शुरू हो जाता है तो अगेन वो टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल हार्मोन है उसको बढ़ाना शुरू कर देगा और फिर वो पूरा एचपीओ एक्सिस को गड़बड़ करते हुए ये जो बीमारी है उसको पैदा कर सकता है. तीसरी जो चीज है वो है हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं.
2: जी.
0: लेकिन अमल करना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो रहा है. लेकिन जब तक आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, जिस समय पर सोना है आपको प्रॉपरली सो जाना है, क्योंकि पाचन अगर डाइजेस्टिव

0: सिस्टम को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो भोजन पचा नहीं पाएगा, भोजन नहीं पचाएगा तो ना आपको अच्छी एनर्जी मिल पाएगी और ना वो चीजें शरीर फ्लश आउट कर पाएगा बॉडी से जो उसको नहीं चाहिए। और जैसे ही ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू होंगे आपको किसी न किसी तरह की समस्या होगी, जिसमें कि स्त्रियों में चूंकि ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है इसको अफेक्ट करता है वो।
1: एक फोन और आ रहा है मैडम, ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं
1: जी। आरोग्य में आपने फोन किया है, बताएं। आज PCOS पर बात हो रही है, महिलाओं की समस्या है PCOS, और डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, तो पूछ लें प्रश्न।
2: ये जो समस्या जो होती है ये क्या किसी उम्र बढ़ने के बाद होता है या फिर शुरुआती दौर में ज्यादा होता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र बढ़ने के बाद ही होगा या शुरुआती दौर में होगा। जब शरीर में जब भी जो कारण है इसके PCOS होने के वो जब इकट्ठा हो जाएंगे या बहुत सारे कारण अगर अफेक्ट करना शुरू करेंगे हार्मोनल सिस्टम को तो ये समस्या हो सकती है। इसके लिए कोई एज का ऐसा नहीं है कि वो 13-14 साल में ही हो जाएगी या 40 साल के बाद होगी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: जी धन्यवाद।
1: कुछ प्राकृतिक या घरेलू उपाय हैं मैडम इसको ठीक करने के लिए?
0: हाँ घरेलू उपाय हैं, लेकिन देखिए घरेलू उपाय तभी काम करेंगे जब जैसे कि बॉडी इनिशियल सिम्टम्स दिखाना शुरू करती है।
1: जी, जी।
0: उस समय पर हम घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कुछ चीजें हैं टेस्टोस्टेरोन को या एंड्रोजन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सामान्य चीज है अलसी या तीसी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उसको आप हल्का सा रोस्ट करके भून करके और एक चम्मच के बराबर तीसी अगर रोज आप खाएं तो अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा और जो एंड्रोजन्स हैं या मेल हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज ऐसी है कि जो लोग जैसे प्री डायबिटिक फेज में हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको मोटापा ज्यादा आ गया है या आना शुरू हो गया है और उसके साथ में PCOS के सिम्टम्स आ रहे हों, उनमें दालचीनी एक बहुत ही अच्छा हर्ब है जिसका कि काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं जो इसमें मदद करेगा।
1: जी डॉक्टर साहिबा, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं।
0: जी
3: हेलो,
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
1: आरोग्य में आपने फोन किया है?
3: हाँ जी,
1: आज PCOS की समस्या पर बात हो रही है और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ साथ ही पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। तो आप डॉक्टर साहिबा से अपना प्रश्न पूछ लें।
3: तो डॉक्टर साहिबा को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: स्त्रियों में जो अलग जैसे रोग होते हैं क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने रोगों को अपना उपचार कर सकती है, मेरा ये प्रश्न।
0: स्त्रियों में बहुत अलग अलग तरह के रोग होते हैं, फिलहाल हम लोग PCOS या PCOD के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ चीजें बताई पहले भी, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेने के लिए, जैसे जो अलसी के बीज होते हैं या तीसी के बीज होते हैं, फ्लैक्सीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनका सेवन जो मेल हार्मोन बढ़ता है बॉडी में उसको कंट्रोल करने में काफी सहायक होता है। फिर ऐसी कोई भी चीज जो सामान्य तौर पर हम बोलते हैं कि सूजन, तो सूजन हमेशा बॉडी के ऊपर ही नहीं दिखती, इंटरनल इन्फ्लेमेशन होते हैं जिसका कि कंप्लेन करती हैं स्त्रियां, जैसे लगातार थकान का बना रहना, भोजन ठीक से पचना नहीं, इस तरह के कई सिम्टम्स हैं जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन को दिखाते हैं। तो उस समय पर हल्दी है, टमाटर जिसको कि नेगेटिव कैलोरी फूड भी कहते हैं, तो टमाटर जैसी चीजें हैं, कुछ अखरोट या बादाम जैसे नट्स हैं, फ्रूट्स में अगर हम देखें तो सेब जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। साथ में कुछ काढ़े भी रहते हैं जो आयुर्वेदिक उपचारों में आते हैं, जैसे सौंफ है, अजवाइन, धनिया, हल्दी, अदरक, इनको मिक्स करके अगर लिया जाए तो
3: जी, आपने जैसे एप्पल की बात की जो हमारे जो हिमाचल में उपलब्ध होते हैं,
0: जी जी,
3: अखरोट की बात आपने की
0: जी,
3: और जो ये बादाम भी हमारे होते हैं, बादाम कितना कारगर है?
0: एक्चुअली इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने थाली भर के खाना खाया उससे हमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो 5 या 6 बादाम से मिल जाएंगे, लेकिन हमें जब भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट और बादाम जैसी चीजें, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामान्य भोजन से वो बहुत ज्यादा पोटेंट हैं, तो उसका क्वांटिटी बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे अगर हमें पसंद है तो हम मुट्ठी भर के बादाम खा लें, ऐसा नहीं हो
1: जी,
0: उसकी क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड रहनी चाहिए। कुछ और चीजें हैं कि ऊपर की स्किन हटनी चाहिए,

0: तो जो सामान्य मतलब डूज एंड डोंट्स रहते हैं कि किस तरह से भोजन लेना है उसको ध्यान में रखें और इसका सेवन करें। बाहर का खाना, पैकेट का खाना, ये सारी चीजें अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी, धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद राकेश जी। बहुत सी बहनें अगर परेशान होती हैं पीसीओएस की समस्या से और उनको बताया जाता है, जैसा आपने भी बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये समस्या ज्यादा होती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की क्या दवाएं लेना चाहिए, ये दवाएं लेना कितना सुरक्षित है बताएं।
0: पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के इम्बैलेंसेस हों ही नहीं,
2: जी।
0: क्योंकि इसको रोकना हमारे अपने हाथ में है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आप बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, या पर्युषित अन्न हम उसको बोलते हैं, भाई खाना भोजन जो है वो बनता है 4 घंटे के अंदर में खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा देर रखा जाता है तो उसका जो नेचर है वो अलग होने लगता है,
2: जी।
0: और जो भी डी नेचर्ड फूड है वो अपनी तरह का ही बॉडी में इम्बैलेंस प्रोड्यूस करेंगे।
2: जी।
0: तो हमें सबसे पहले तो वो रोकथाम की कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करें। दूसरी चीज, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम है तो हम कुछ हार्मोनल पिल्स लेकर के पीरियड्स को आगे या पीछे कर लें, तो इस तरह की समस्या नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है भाई, वो नेचुरल प्रोसेस है। आपके अंदर डिटॉक्स की प्रोसेस हर महीने चलती है, ये एक बहुत अच्छी चीज है।
2: जी
0: तो उस प्रोसेस को अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो वो समस्या आएगी।
2: जी जी
0: और जहां तक हार्मोनल थेरेपी की बात है तो कोशिश ये करनी है कि हमें इस तरह की थेरेपीज लेनी ना पड़े, क्योंकि शरीर अपने आप में मतलब पूरी तरह से एक फंक्शनल मशीन है। शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बीमार हो। तो आप जैसे ही उसे सपोर्ट करते हैं अच्छी नींद से, अच्छे भोजन से, अच्छे विचारों से, अच्छी लाइफस्टाइल से, वैसे ही अगर वो ट्रैक से हटा है, किसी भी तरह से इम्बैलेंसेस शुरू हुए हैं, तो वो ट्रैक पे आना शुरू कर देगा।
2: जी
0: तो हमें पहले तो कारण जानना है किस कारण से हुआ, कारण का निवारण कर सकते हैं तो उसे करना है। अगर किसी स्टेज में इस तरह की समस्या आ ही गई कि हमें हार्मोनल थेरेपी लेनी ही है तो बेशक आप उसे लीजिए, मैं उसके लिए बिल्कुल मना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर संभावना हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस से, आहार से, कुछ बेसिक औषधियां जो रहती हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस मोस्टली वो हार्मोन पे डायरेक्टली वर्क नहीं करती,
2: जी
0: वो आपके ब्रेन पर वर्क करेंगी, आपके ओवरीज पर वर्क करेंगी, यूटरस पर, लेकिन वो डायरेक्टली किसी हार्मोन को बढ़ा दें या कम कर दें, या 21 दिन हार्मोन लेने के बाद आप छोड़ेंगे तो पीरियड आ जाए, इस तरह की समस्या वो नहीं करती। तो नेचर के साथ में पहले हम जाएं, अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है तब फिर हम हार्मोनल थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर अगर हार्मोन नहीं बना रहा है और हमें बाहर से देना पड़ रहा है
2: जी
0: तो हमें पहला जो ध्येय है हमारा, ये बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करे, ये होना चाहिए।
2: अच्छा, पीसीओएस की समस्या के दौरान अगर सिस्ट या गांठें या फाइब्रॉइड जैसी समस्या अगर हो जाती है तो क्या इसका इलाज केवल ऑपरेशन ही है?
0: बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म पे, मतलब भोजन आपने किया, वो पचा, वो बाहर निकला, आपको कितना पोषण मिला, कितनी।
2: आपको अभी रोकेंगे मैडम,
0: जी
2: क्योंकि एक फोन आ रहा है, श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो।
3: हेलो, तारा
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: शंकर पटेल, जयसिंहपुर, जौनपुर।
2: बहुत स्वागत है आरोग्य में। आज
3: हाँ
2: महिलाओं की समस्या पीसीओएस पर हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर
3: हाँ
2: ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, तो आप
3: हाँ
2: डॉक्टर साहिबा से बात करें।
3: अच्छा, ये बताइए, स्त्रियों में अंडाशय का होता है
0: जी
3: गांठ,
0: जी
3: तो उसका इलाज तरतिया ऑपरेशन से है कि ऐसे जो है नॉर्मली दवा ठीक हो जाता है?
0: नॉर्मली दवा से भी ठीक हो सकता है, अलग
3: हाँ
0: अलग तरह के, असल में ये जो गांठें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कई बार गांठों में अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेजिक सिस्ट जिसको बोलते हैं, तो
3: हाँ
0: अगर वो उस स्टेज पर पहुंच गई है तो डॉक्टर आपको हो सकता है कि ऑपरेशन की सलाह दें। अगर वो हाँ, नहीं पहुंची है और गांठों का जो आकार है वो छोटा है
3: हाँ,
0: तो वो सामान्य तौर पर दवाइयों से, एक्सरसाइज से, योगा करने से और अच्छा भोजन लेने से, अच्छी नींद से ठीक हो जाएगा।
3: अच्छा अच्छा
0: जी।
3: हेलो डॉक्टर साहब।
0: जी जी।
3: अच्छा, वो पेट में बच्चा है, वो 2-4 दिन में डिलीवरी होने वाला है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना?
0: नहीं, अभी तो उससे कोई, अब तो अगर

0: तक सस्टेन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: उसका ड्यू जो है 9 तारीख को है।
0: जी जी नहीं तो दिक्कत
1: कोई दिक्कत नहीं होगी।
0: नहीं, लेकिन उसका इलाज उसके बाद करवा लेना है।
1: अच्छा, उसके बाद दिखा देना है।
0: जी जी बिल्कुल
2: ठीक। धन्यवाद तारा शंकर जी। एक फोन और आ रहा है मैडम। हेलो।
3: हाँ हेलो।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ हाँ, ये मैडम मऊ से बोल रहे थे। नमस्कार जो है।
2: मऊ से कौन साहब बोल रहे हैं?
3: हम बोल रहे थे वो पीएन गुप्ता जो है।
2: डॉक्टर अच्छा। ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं।
3: जी जी
2: जी, आप बात कर लें।
3: हाँ जरा बात कराएं। हेलो
0: जी, बोलिए।
3: हाँ मैडम नमस्कार। डॉक्टर साहब ये जरा बताइए, जैसे ये लेडीज को जैसे वो कमर में दर्द वगैरह होता है या सर दर्द है, वो ये हाथ पैर की उंगलियों में थोड़ा दर्द वगैरह जो हो, ये किस कारण से ऐसा होता है और क्या इसका समुचित उपचार है?
0: एक्चुअली अगर हाथ पैर की उंगलियों में छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है, साथ में कमर में दर्द हो रहा है, तो ये प्रॉपरली मस्क्यूलोस्केलेटल यानी हो सकता अच्छा। है कि यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाए या किसी तरह की। उम्र क्या है?
3: अरे करीब 55-56।
0: हाँ, तो वहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं।
3: अच्छा,
0: तो ये हमेशा गर्भाशय की समस्या से रिलेटेड नहीं रहता, तो एक बार हमें ये देखना होगा कि ये गर्भाशय की समस्या से रिलेटेड है या नहीं। दूसरी चीज, अगर ये 50 के ऊपर की है तो मेनोपॉज एक चीज होती है जिसे मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उस समय उसके बाद हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो अगर वो मासिक धर्म बंद हो गया है और वीकनेस आ गई है, तो एक बार ये दिखा लें कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में वात बढ़ना जिसको हम बोलते हैं, छेद जो है वो बड़े होने लगते हैं, तो उसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। ऐसे में अगर ये ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हैं तो वहां पर उनको अच्छे से मालिश कराना, बढ़िया भोजन देना जिससे कि हड्डियों में ताकत बनी रहे, क्योंकि शरीर जो है कैल्शियम लूज होने लगता है और मासिक धर्म कब खत्म होने के बाद शरीर जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता स्त्रियों के लिए, तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी तरह का कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं वो आप ले, विटामिन डी सप्लीमेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी होती हैं जैसे च्यवनप्राश जैसी कोई वस्तु है, शतावरी घृत या अश्वगंधा घृत है, या शतावरी कल्प आता है, तो ये उनको शुरू कीजिए ताकि उन्हें ये तकलीफें ना हो।
3: अच्छा, अच्छा
0: जी।
2: आपने बताया ना कि गर्भावस्था भी संभव है पीसीओएस के दौरान, तो ऐसी स्थिति में जब किसी महिला को पीसीओएस की समस्या है तो गर्भधारण में करते समय या गर्भावस्था के दौरान उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: असल में पीसीओएस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण गर्भाधान जल्दी हो नहीं पाता
2: जी,
0: मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं इनफर्टिलिटी को बहुत कॉज करता है, क्योंकि जो एग्स हैं
2: जी
0: वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते हैं, तो हमारा जो एक कैलकुलेटेड साइकिल रहता है कि ओव्यूलेशन का टाइम हम 10 दिन से लेकर के 16 दिन तक करें, इसकी वजह से जो गर्भाधान है वो प्रॉपर हो जाएगा, तो फॉलिकल्स मेच्योर ही नहीं हो पाते हैं, ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि सिस्ट या फाइब्रॉइड्स होने के बावजूद गर्भाधान हो जाता है
2: जी।
0: तो यदि गर्भाधान हो जाता है तो हमें शुरुआती दौर में ये देखना है, क्योंकि गर्भ जैसे जैसे विकसित होता है उसी तरह से ये जो गांठें हैं वो विकसित होती हैं
2: जी,
0: तो हमें इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गांठों का जो विकास है वो कहीं बहुत ज्यादा तेजी से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो ज्यादा बढ़ती हैं तो गर्भ पर प्रेशर पड़ेगा और गर्भ में अनामलीज आनी शुरू होंगी
2: जी।
0: ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास उतना गांठों का नहीं हो पाता और गर्भ जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाता है
2: जी,
0: तो उसमें हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। नॉर्मली फुल टर्म बेबी होने के बाद मे बी सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करना पड़े, क्योंकि कहां पर गांठ है और कितनी बड़ी गांठ है वो डिपेंड करेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी
2: जी।
0: तो इनका ध्यान हमें देना पड़ेगा। अगर गर्भधारणा हो जाती है तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, गर्भिणी को उस समय आप जितना खुश रख सके उतना बेहतर है। ठीक है, और डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कैसे टैकल किया जाए वो समय रहते निर्धारित किया जा सकेगा
2: जी। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप दे रही हैं और श्रोताओं को इससे लाभ होगा। एक आखिरी प्रश्न और, कि क्या पीसीओएस पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: बिल्कुल ठीक किया जा सकता है।

0: कई बार ये प्रश्न हमारे पास क्लिनिक में आता है कि एक बार हो गया तो वही वो लाइफ टाइम, और स्पेशली जो जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम शादी करें या नहीं करें, हम बच्चा पैदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अभी जो टर्म आया है PMOS, तो वो इंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली बचाव हमें चाहिए ही, लेकिन ठीक हो सकता है, आप
1: जी
0: घबराएं नहीं।
1: जी चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है?
0: मैं तो यही कहूंगी, स्त्रियां भगवान का बहुत ही नायाब क्रिएशन है,
1: जी
0: तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप खुद का ध्यान रखें,
1: जी
0: हमेशा कोई दूसरा आपका ध्यान रखे ये संभव नहीं है। तो पहली चीज तो ये है, जो आप लोग गड़बड़ करते हैं, प्रॉपर नाश्ता नहीं करेंगे, चटपटा नमकीन खा लेंगे लेकिन फ्रूट्स आपसे खाए नहीं जाएंगे, ठीक है, वो मतलब हर चीज में थोड़ा नखरा जो है, तो वो नखरे आप उठाइए कीजिए, लेकिन वो स्वास्थ्य को ताक पर रख करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: जी
0: मोबाइल स्क्रॉलिंग करने के चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई, या सीरियल देखने के चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है, आपके ऊपर आपके आपका घर, आपके बच्चे सब आश्रित हैं, तो अपना ध्यान, और आप पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, तो अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो परिवार पूरा कहाँ होगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और श्रोता बहने अगर सुन रही होंगी तो ध्यान देंगी, और जो पुरुष श्रोता हैं वो भी सुन रहे होंगे तो अपने घर की महिलाओं का ध्यान देंगे। तो डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी, आप आई हमारे कार्यक्रम आरोग्यम में और PCOS पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं से साझा की, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतनी अच्छी सलाह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, शरीर के संकेतों को समझिए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, जागरूक बनिए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति अपनी दोस्त शिखा श्रीवास्तव को। सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था पीसीओएस की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ थी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, प्रस्तुति सहयोग शिखा श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता दिलीप यादव। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना,
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
5: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार, थोड़ी सी आवाज ठीक आए, क्या शुभ नाम है आपका?
6: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ सर।
5: कमल श्री सुरवे?
6: तनुश्री।
5: तनुश्री की कनुश्री?
6: तनुश्री।
5: तनुश्री, आपकी आवाज में इतनी जो खनक है ना, वो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल गूंजती सी आवाज आ रही है और रेडियो से बड़ा लगाव है आपका, इसलिए ये मिठास है आपकी आवाज में भी।

0: कार्यक्रम सुनते हो ना, जिस प्रकार आप श्रोताओं से बातें करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या कहने, और आप जैसे श्रोता होते हैं तो खुद ब खुद ये अंदाज, ये मिठास आ ही जाता है आप लोगों को सुनते हुए। बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी।
0: थैंक यू सर, आपको याद होगा तो मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी।
1: जी बिल्कुल, और हमने कहा था कि आप हमें कुछ गा के सुनाएंगी, तो क्या किया इतने दिनों, और इस मौसम में बारिश आपके यहाँ भी ठीक ठाक हो रही है?
0: नहीं सर, नहीं हो रही, दो तीन दिन से बहुत गर्मी से परेशान है।
1: बारिश हम लोग के यहाँ हो रही है, लेकिन ये जो गर्मी और उमस है वो तो है ही इस मौसम में। और आपकी पढ़ाई चल रही है? हाँ, आप शास्त्रीय संगीत वाली हैं। ये है कि जीवन में किससे सीखती हैं आप? आपने नाम बताया था एक बार।
0: हाँ सर, भोसले सर कर मेरे टीचर है, उनसे मैं सीखती हूँ।
1: बिल्कुल, और जीवन में शिक्षकों का बड़ा योगदान है, और मन लगा के सीखिए और कुछ मुकाम हासिल करिए। इधर आपने नया क्या सीखा है?
0: नया सर बहुत सीखा है, मतलब जैसे तराना हुआ और क्या उसे बोलते हैं।
1: उस दिन भी आपने कुछ हमें बंदिश सुनाई थी कोई?
0: जी सर, जी बंदिश सुनाई थी मैंने।
1: हाँ, तो आज आप क्या सुना रही हैं?
0: सर मैं आज थोड़ा सा तराना सुनाती हूँ।
1: जी बिल्कुल।

0: सर।
1: वाह बहुत अच्छा, तो इतने के लिए तो काफी रियाज करना होता होगा आपको।
0: जी सर बहुत रियाज करना पड़ता है, अब दिसंबर में मेरी एग्जाम है।
1: अच्छा अच्छा, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आपकी आवाज में इतनी मधुरता है और साधना में इतनी योग्यता है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।
0: कुछ सुना कर बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी के माध्यम है कि मैं घर बैठे मैं सबको सुना सकती हूँ।
1: हाँ, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए आपकी ये जो प्रस्तुति है वो हमारे कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक, श्रोताओं के तक पहुँच जाती है।
0: जी सर।
1: तो अब कौन सा गाना सुनना है जी, बताएं क्या कह रही हैं? छोटी सी आशा। आपकी बड़ी बड़ी आशाएं पूरी हो, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे बात करके अच्छा लगता है, और खासतौर से ये भी कि इस जमाने में आप गीत संगीत और शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं और जीवन में कुछ करना चाहती हैं, ये बड़ी बात है। आप कामयाब हों और फिर आपसे बातें होंगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: ओके, बाय।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: हम भैया दिया अहमद अली अकबर अंसारी बोल रहे हैं सर।
0: हाँ अली अकबर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल सर बहुत अच्छा है, आप लोग अपना हाल चाल बताइए।
0: हाँ हम लोग के भी हाल चाल अच्छे हैं, श्रोताओं से ही हम लोग का हाल चाल रहता है, और जब आप हमारे से जुड़े रहते हैं और जुड़ जाते हैं तो और भी अच्छा होता है। कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको?
1: कार्यक्रम तो सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुन पा रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन सर हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये लोकल वाले विभाग पर आ जाता।
0: अब मतलब क्या एफएम पर?
1: एफएम पर
0: तो पहले पहले तो मीडियम वेव अलग ही था ना, शुरू में उतने वर्षों तक।
1: जी जी।
0: अब खैर आने वाले समय में हो सकता है कि आपको प्राय जितने भी मीडियम वेव के ट्रांसमीटर हैं वो एफएम पर प्रसारण आने लगे और फिर जो स्थानीय श्रोता हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रसारण मिले। हालांकि ये इंटरनेट का जमाना है, आजकल बहुत सारे श्रोता ऐप के जरिए इसे देश दुनिया में प्रोग्राम को सुन पाते हैं किसी भी केंद्र के।
1: जी सर हम यही चाहते हैं कि हम देखिए फोन लगाते लेकिन हम लोग के बोलने में उतना बज नहीं पाता है ना।
0: जी जी। इंटरनेट वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं आपके यहाँ?
1: इंटरनेट वगैरह थोड़ा सर्वे डाउन चल रहा है।
0: जी जी।
1: हाँ थोड़ा आवाज मतलब थोड़ा फस फस के नेट भी फंसता है थोड़ा।
0: जी जी जी। वैसे ही इसलिए आवाज आप लोगों की फोन में भी कई बार कट कट के आती है,
1: ये नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है
0: जी। और आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: गीत तो सर हम ठीक साहब की एक सोचे है लेकिन उसका मूवी का नाम नहीं मालूम है
0: जी। गाने का बोल आप बता दें हमें,
1: गुनगुना के हम बता दे रहे हैं।
0: हाँ बोलिए।
1: फूल का शबाब क्या, उसन महताब क्या, आप तो बस आ

0: बस है, आप की आवाज सर।
1: तो ये फिल्मी गाना है ना?
0: हाँ जी जी
1: जी। तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपने कॉल किया।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी, स्वागत है आपका।
1: पांडे बोल रहे हैं सर?
0: जी जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ, बताएं।
1: मैं नंदू राजभर मंगारी से बोल
0: रहा हूँ। मंगारी?
1: गाजीपुर मंगारी।
0: हाँ, गाजीपुर मंगारी से नंदू राजभर।
1: जी
0: जी, स्वागत है आपका। तो हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं
1: कर रहे थे सर,
0: तो आज खुशी की बात है कि आपका फोन लग गया। दरअसल होता ही है कि देश भर से श्रोता प्रयास करते हैं और फोन किसी का लग जाता है, इसमें हम लोग कोई वश नहीं होता हम लोगों का।
1: हाँ सर, बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे।
0: जी,
1: जब हम दोनों आंखों से दिव्यांग है सर।
0: तो रेडियो आपका निरंतर साथ रहता होगा, देता होगा।
1: लेकिन मैं पीसीओ चलाता था।
0: जी जी,
1: 2003 में।
0: जी बिल्कुल, वो दौर था जब पीसीओ पर लाइनें लगा करती थी, हमें भी याद है, और अलग अलग कॉल रेट हुआ करते थे दिन से लेके रात तक के, और पीसीओ हर जगह होते थे और लोगों की जरूरतें बहुत उनके जरिए पूरी होती थी। मोबाइल उस समय तक अभी आया नहीं था।
1: हाँ सर, मोबाइल था लेकिन सबके पास नहीं था।
0: बिल्कुल शुरुआत में। और रेडियो से कितना पुराना जुड़ाव है, कैसे सुनते हैं प्रोग्राम और कैसे लगते हैं आपको?
1: सर, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से कितनी रेडियो मैंने चला चला के मन खराब हो गई फेंक दिए।
0: जी जी,
1: तो मेरा रेडियो एक सहारा है।
0: मेरा
1: रात का समय जी निकलता है तो रेडियो के द्वारा निकलता है।
0: देखिए, हम सबके जीवन में रेडियो का बड़ा योगदान
1: है। रहता है
0: जी जी।
1: हेलो फोनिंग फरमाइश, और जो भी कार्यक्रम आते हैं अगर समय मिलता है तो मैं सुन लेता हूँ। ज्यादा कर मैं क्रिकेट से मतलब रखता हूँ।
0: जी जी, कमेंट्री जो आती है आंखों देखा हाल। तो हालांकि पहले की तरह, पहले हर मैच के हर जगह के आंखों देखा हाल आते थे, अब रेडियो पर वो थोड़ा सा आंखों देखा हाल जो कमेंट्री है वो भी थोड़ा सा कभी कभी आती है किसी किसी मैच की।
1: बहुत कम हो गया है।
0: जी जी, पहले की तुलना में। हालांकि इन दिनों
1: नहीं आती है तो बहुत टेंशन होता है।
0: ये जो महिलाओं का जो हो रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, उसकी कमेंट्री आ रही है। जी जी, आमतौर पर बहुत सारे जो मैचेज होते हैं, खासतौर से इस तरह की जो चैंपियनशिप होती है, उसमें भारत से जुड़े और सेमीफाइनल फाइनल मैचों की कमेंट्री तो आती है।
1: जी
0: हाँ,
1: तो जी, इनका तो महिला लोग का तो रोज जब हो रहा तब आ रहा है।
0: जी जी जी,
1: पहला मैच थाईलैंड से इंडिया ने 94 रन से जीता है।
0: जी जी, यानी पूरा मुकम्मल जानकारी आप रखते भी हैं।
1: जी जी
0: जी,
1: कोई बोलने जिस दिन नहीं आता तो बहुत टेंशन होता है कि रेडियो पर नहीं।
0: अच्छा, बाकी हेलो फोन इन फरमाइश वगैरह ये जो प्रोग्राम है वो आप सुनते हैं?
1: ये तो हमेशा सुनते हैं सर।
0: जी
1: आपका।
0: जी जी,
1: जितने लोग बोलते हैं सब काम सुनते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया। और आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: आज इस कार्यक्रम में हमको गीत सुना दी, इतना खुश है कि ये गीत क्या नाम भी नहीं आ रहा।
0: जी
1: मुझे आज सुना दीजिए सर।
0: जी,
1: सिर्फ तुम का। दिलबर दिलबर।
0: दिलबर दिलबर वाला गीत। ये गीत जी जी,
1: दोस्तों का नाम ले सकते हैं।
0: जी बताइए।
1: हमारे मित्र हैं डॉक्टर सचिन और अंगनु यादव है, दुर्गा राजभर, अशोक राजभर
0: जी,
1: अखिलेश राजभर और तमाम ऐसे मेरे दोस्तों तक ये हमारा गीत पहुँचे।
0: तो आपके दोस्त भी रेडियो के शौकीन हैं आपके साथ साथ रहते हुए?
1: हाँ सर, वो लोग भी शौकीन।
0: तो अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल हैं और अलका याग्निक की आवाज है। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं भोपाल से आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था। सर
0: क्या कहने, क्या अदा, क्या अंदाज है आपका, और भोपाल के मौसम का अंदाज कैसा है अभी?
1: सर भोपाल का मौसम तो बदल छाए हुए हैं, हल्की हवा चल रही है, बाकी बारिश नहीं हो रही है।
0: इस बदल का जवाब नहीं, हमारे यहाँ बादल छाते हैं लेकिन आपके इलाके में बदल छा जाते हैं, यही जो हमारी भाषा

0: जो खूबसूरती है हमारे देश की वो यही है।
1: जी सर, आप अरुण जी बात कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: सर आपकी आवाज में सर क्या जादू है, मैं अभी तो नया जुड़ा हूँ मगर मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ जब से,
0: जी,
1: तो मेरे दिल ने चाहा कि अरुण जी की बात जरूर होना चाहिए।
0: क्या कहने, वही दिल से जब कोई चीज चाही जाए तो देखिए बात लाइन जो है जुड़ ही जाती है दो दिलों की।
1: जी।
0: तो रेडियो के पुराने शौकीन हैं और गीत संगीत के।
1: सर रेडियो से तो सर मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, 2000 की से। तो
0: जी, और कारोबार कामकाज भोपाल में किस चीज का है आपका?
1: सर कारोबार मेरा जो है, मैं टेलर हूँ
0: जी,
1: और सिलाई का कारोबार है मेरा।
0: जी अच्छा, देखिए इस सिलाई के कारोबार ने भी जैसे रेडियो ने बहुत सारे दौर देखे तो आपके सिलाई के कारोबार ने भी देखा। एक समय आया था बीच में जब रेडीमेड की मांग ज्यादा हो गई थी और ये कारोबार थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, लेकिन वापस फिर से लोगों को समझ में आ गया कि सिलवाए हुए और पसंद के कपड़ों के कपड़े पहनना, इसकी बात कुछ अलग ही होती है।
1: जी सर, आज से 8-10 साल पहले रेडीमेड ज्यादा हो गया था।
0: जी,
1: मगर अब बाकी अब जो है बिल्कुल रेडीमेड कम है और अब इस पे रुझान लोगों का कुछ ज्यादा हो गया।
0: जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे कि बीच में कुछ लोग बहुत सारे जो विकल्प हैं रेडियो के भी उस ओर मुखातिब हुए, लेकिन वापस फिर से आकाशवाणी और विविध भारती का जो स्थायी स्थान है उसकी ओर लोगों का लौटना हो रहा है।
1: जी सर,
0: तो
1: मैं बताऊं मेरी तो मैं 2005 से जुड़ा था
0: जी।
1: आरती से, और मेरे मुंबई भी फोन लगे, भोपाल भी लगे, बहुत सारी आकाशवाणी लगाए मैंने उस टाइम पे।
0: जी,
1: और बीच में मैंने सर 12 साल रेडियो केंद्र सुना ही नहीं बिल्कुल भी। और अभी 2 महीने से फिर अचानक दिल हुआ।
0: जी,
1: और
0: देखिए वो जो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो पुरानी चीजें अपने मेयार पे अगर कायम रहें तो उनका दौर कभी नहीं जाता है। बस ये ख्याल रखना है कि हम बाजार के लिए और जमाने के लिए बहुत सारी चीजों को, अपने मूल्यों को, तहजीब को, और एक जो पैटर्न है हमारा जिससे हम हमारी पहचान है वो नहीं बदलनी चाहिए।
1: जी सर।
0: और अब कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: सर आज सुनवा दीजिए मुझे आज जावाज फिल्म का गीत, और गाने के बोल हैं तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा।
0: अब गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर, बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको, नमस्कार।
1: थैंक यू सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: रणजीत सिंह बोल रहे हैं।
0: रणजीत सिंह जी कौन सी जगह से?
1: गोरखपुर से सर।
0: गोरखपुर से जी, बिल्कुल आपका तो नाम जाना पहचाना है, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: बहुत बार आपसे बात भी हुई है सर।
0: जी जी जी, और आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम फेसबुक वगैरह पे होते हैं उससे भी आप जुड़े रहते हैं।
1: हाँ सर। हाँ।
0: तो बदलते दौर में रेडियो का साथ आप जैसे श्रोताओं का बना हुआ है नई तकनीक के साथ भी।
1: हाँ,
0: और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: प्रोग्राम सर आकाशवाणी वाराणसी अच्छे लगते हैं सर।
0: और हालांकि गोरखपुर आपके आसपास वाला जो गोरखपुर केंद्र है उससे बड़ी हमारी यादें जुड़ी हैं बचपन में, बिल्कुल शुरुआती दौर में जब बाल संघ कार्यक्रम वहां से सजीव हुआ करता था तो हम लोग सुबह जा करके 8:15 बजे ही गेट पर बच्चे इकट्ठे हो जाते थे।
1: 9:30 बजे से आता था सर।
0: जी, तो बिल्कुल शुरू में ही जा करके उस समय लाइव होता था। अब तो हर जगह ये बच्चों का कार्यक्रम भी रिकॉर्डेड होने लगा है, लेकिन एक दौर था 80 के दशक में जब ये प्रोग्राम होते थे लाइव उस समय, और नवनीत मिश्र और उदिता श्रीवास्तव थी वो उस समय करती थी। इन लोगों को आपने बतौर अनाउंसर सुना है, हालांकि बाद में नवनीत मिश्र जी जो है वो समाचार वाचक हो गए थे।
1: सर हम एक सर्वेश दुबे जो आते थे।
0: जी जी मालूम है। हाँ हाँ।
1: और एक आशा निवेदी जो तो आती थी वो भी।
0: जी जी, बाद में वो न्यूज पढ़ने गई वो।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। और एक जो है इंद्रभूषण सिंह जी थे।
0: जी जी।
1: हाँ,
0: तो उससे भी पहले
1: कांजवाल जी आती थी।
0: जी जी जी, ये लोग अभी बात के हैं। हालांकि जो दुबे जी हैं सर्वेश जी वो भी उस समय थे बचपन में जब हम थे वहाँ पर। तो
1: सर हम 2003 से न सुने।
0: हाँ बिल्कुल, और उससे बिल्कुल वो 30 साल पहले की बातें हैं। हाँ इसीलिए हम कह रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा आपसे बातें करके, आप उस शहर से हैं जहाँ बचपन कभी बीता कुछ समय हमारा वहाँ। बहुत शुक्रिया।
1: कुछ कार्यक्रम सुनते हैं सर, जैसे जी गीत है, खेती बाड़ी है, ग्राम जगत है।
0: जी बिल्कुल। और कौन सा गीत आज सुनवा दें इस कार्यक्रम में आपको?
1: सर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का उस गीत है, परदेसी परदेसी जाना नहीं वाला, सर वही बजा दीजिए।
0: जी, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं।
1: बात करके सर बहुत अच्छा लगा।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपका नाम हमें याद रहता है।
1: हाँ सर। हाँ सर।
0: तो ये गीत हम आपको अब सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: प्रणाम।
0: प्रणाम, स्वागत है, नमस्कार।
1: अरे सर, बहुत इंतजार करते करते आज जाके सफल हुए हम।
0: हाँ, देखिए, आजकल किसी भी कार्य में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। वो शेर कहा है ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है।
1: हाँ सर, और हम सर भूल गए, हमारा नाम है बजरंगी प्रजापति।
0: नहीं, आपको याद होगा लेकिन आप बताना भूल गए शुरुआत में। कोई हमें याद रहता है, अभी हम आपसे जरूर हम जरूर जी।
1: हाँ सर, हम तो बहुत पुराने श्रोता हैं, लगभग सन 90 से सुन रहे हैं रेडियो।
0: जी जी जी जी,
1: लेकिन बहुत प्रयास कर रहे थे, आज जाके लगा।
0: हाँ हाँ हाँ, ये है कि थोड़ा सा निरंतर अगर शुरुआत से लगातार रुक रुक के आप कॉल करते रहेंगे तो आपका भी फोन लग जाएगा, जिससे बहुत सारे श्रोताओं के बार बार फोन लग जाते हैं। और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम खासतौर से आपको अच्छे लगते हैं?
1: जी सर, अब तो इतना व्यस्त हो गए हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं, परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, सब काम करते हैं, बीच में छोड़ दिए थे एकदम, सुनना रेडियो वेडियो सब बंद हो गया था।
0: जी जी।
1: और अचानक आपका ये दिखा हमको।
0: जी जी,
1: बस वही दिखा, बस हम भी सोचे कि लीजिए अब तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आ गया, वही देखे, तब से प्रयास कर रहे थे।
0: हाँ हाँ हाँ, देखिए नए दौर में ये है कि सोशल मीडिया से ये सहूलियत हो गई है कि प्रोग्राम को आप बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं, दोस्तों मित्रों को भी सुनवा सकते हैं।
1: जी सर, जी सर,
0: जी। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: सर, गीत तो घबराहट में कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, उसी के हिसाब से गाना कि बिछड़े हुए आके मिले हैं, ऐसे कुछ है।
0: अच्छा, हाँ, लावारिस का गाना है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ।

0: आके मिले
1: जी। हाँ वही, कम से कम कह रहे हैं कि 97
0: जी जी
1: लगभग।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अब जाके आपसे बात, एक बार बात हो चुकी सर।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो तभी तो आपका लगाव जुड़ाव है कार्यक्रम से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं अनजान के बोल, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत गीत आप तक पहुंच रहा है। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश।
0: जी स्वागत है।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा ग्राम पचोकर पोस्ट रामजाग जिला जनपद उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं।
0: क्या कहने, आखिर जाते जाते आपका फोन लग ही गया, बहुत मुबारकबाद आपको। हालांकि आज थोड़ा सा आपको प्रयास ज्यादा समय तक करना पड़ गया। हाँ नहीं, घंटी कई बार भी जा सकती है, जैसे हम बार बार बताते हैं कि अब ये होता है कि जैसे आपसे बात हो रही है तो किसी से भी बात होगी तो उस दरमियान घंटी ही सुनाई देती है बाकी लोगों को, और रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल तय वक्त पे शुरू हो जाती है। तो कैसे हैं, बारिश तो इस साल अच्छी हो रही है। अच्छा, लेकिन बनारस में और भी कई लोगों ने कहा कि बनारस में और शहर में बारिश हो रही है, जिन खेती बाड़ी के इलाकों में होनी चाहिए। अच्छा, पहले के जमानों में बारिश होती थी तो कई कई किलोमीटर तक वही मौसम होता था, अब ये हो रहा है कि कुछ ही दूरी पे एक ही शहर में दो मोहल्ले में अलग अलग तरह के मौसम हो जा रहे हैं।
1: जौनपुर में कुछ जगह बारिश तगड़ी हो रही है, कुछ जगह कमजोर हो रही है।
0: हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता ये कहा जाता है।
1: सर, हमें एक चीज प्रसन्नता में है, जो महिला कब जो प्रसारण हो रहा है कमेंट्री का, मैं
0: बिल्कुल और बिल्कुल आप जैसे श्रोता रहेंगे तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, बातें पहुंच जाती हैं और आने वाले समय में क्रिकेट कमेंट्री और ज्यादा आपको सुनने को मिले, हम सबका यही प्रयास और कोशिश और कामना होती है। कौन सा? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन जी जी जैसा हमने कहा कि डीआरएम में अभी फिलहाल रेडियो ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं है कई जगहों पर, और वो काफी कॉस्टली भी है, तो जिस तरह से अभी व्यवस्था चल रही है उसकी अपेक्षा तो आप मोबाइल पर ही, एंड्रॉयड रहे और ठीक ठाक मोबाइल हो तो आप सुन सकते हैं उससे। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: गंगा जमुना का गीत सुनना चाहते, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गाना है।
0: क्या कहने, बचपन में ये फिल्म देखी थी हम लोगों ने और बहुत समय के बाद, और कभी कभी इस तरह के गाने याद आते हैं, श्रोता फरमाइश करते हैं और बड़ी बिल्कुल इसको मुहावरे के रूप में इसको लोग सुनते थे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे।
1: तो किस दोस्तों का कुछ नाम लेना?
0: जी बताएं।
1: अजीत कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, देवी गुरु प्रधान, बलिस्टर राजन और संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार पटेल और भग्गू जग्गू जग्गू छोटू टिंकू।
0: बिल्कुल, एक तो है कि एक आपका रेडियो साथी और दूसरे इतने सारे साथी हैं तो आपका मन लगा रहता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अब गीत आपको सुनवा रहे हैं, नौशाद का संगीत है, शकील बदायूनी ने गीत के बोल लिखे हैं, लता मंगेशकर की आवाज। नमस्कार, शुक्रिया।

सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है। अब अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रमों में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। एक बजने को है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
4: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
3: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
4: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने हुए

0: देख रही 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सविता चौहान, पिता का नाम राजकुमार चौहान, ये कालीनगर चकिया चंदौली की निवासी हैं और 7 अगस्त 2026 से अपने घर से लापता हैं। सविता चौहान की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ, एक गहरा शरीर, चेहरा गोल है, आंखें और बाल काले हैं और आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार सविता देवी, पति का नाम सुरेंद्र कुमार, ये ग्राम भंवर बभनी सोनभद्र के निवासी हैं और 18 जून 2026 की मध्य रात्रि 1 बजे से अपने घर से लापता हैं। सविता देवी की आयु है 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला,

सामान्य चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र को सूचना दें। चंद्रभान, पिता का नाम झगड़ू, ये डकही शिकारगंज चकिया चंदौली के निवासी हैं और 2 अगस्त 2026 की सुबह 10 बजे से अपने घर से लापता हैं। चंद्रभान की आयु है 25 वर्ष, कद 6 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की अब रूपरेखा। आज रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात में 9:30 पर अंजुमन कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गज़लें सुनवाई जाएंगी। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे चंदा रानी की गाई गज़लें आप सुन सकते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में कपिल देव सिंह से बातचीत का विषय होगा अनुभव खेती में। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार विष्णु यादव शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण है आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे डॉक्टर शशिकांत यादव की वार्ता होगी आओ जाने पौराणिक ग्रंथों के बारे में, साथ ही चर्चा और गीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। आज इतवार है, कार्यक्रम में 1:15 पर आज सुनिएगा झलकी बड़े बाबू की कसरत, लेखक कैलाश गौतम, प्रस्तुति विपिन शर्मा की। लोक रंग कार्यक्रम होगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित, दिन में 1:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने आज चित्रकूट पहुंचे। वजीर आला ने सबसे पहले सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर रामघाट हल्के का मुआयना कर मंदाकिनी नदी के सैलाब से हुए तबाही का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अफसरान से राहत और रसानी के कामों की जानकारी हासिल की। वजीर आला सैलाब से मुतासर कुनबों से मजाकिरात भी करेंगे। इसके बाद राहत कैंपों में मुतासरा कुनबों से मुलाकात कर रामायण मेला अहाते में राहती अशिया तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सैलाब से मुतासर तकरीबन 800 कुनबों को राहत अशिया भी दिए जाने के साथ ही सैलाब से बेघर होने वाले कुनबों को रिहाइश के लिए जमीन अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट और राहती रकम भी मुहैया की जाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा इस वक्त उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं। वो रियासत के नायब वजीर आला भी रह चुके हैं। उनकी राज्यसभा की मुद्दत 25 नवम्बर को खत्म होने वाली थी। राष्ट्रपति भवन की रिलीज में कहा गया है कि डॉक्टर शर्मा की तकर्री उनके चार्ज संभालने की तारीख से होगी। आकाशवाणी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी पूरी के साथ निभाएंगे।
1: मैं समझता हूँ कि ये एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ।

0: जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
1: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्जामिनेशन 2025 आज दो शिफ्टों में मुनक्किद हो रहा है। ये इम्तिहान रियासत के 6 जिला में हो रहा है। इम्तिहान के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 मराकज कायम किए गए हैं। लखनऊ के 52 मराकज पर हो रहे इम्तिहान में 22,996 उम्मीदवार शरीक हो रहे हैं। इम्तिहान को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने इम्तिहान को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। इम्तिहान के दौरान दोनों शिफ्टों में कुल 520 पुलिस एहलकार तैनात हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार के मुताबिक यह इम्तिहान सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक पहली शिफ्ट में लिया गया। अब दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शदीद बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 24 जिला इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं। रियासत में कई दरिया अब भी बह रहे हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब है। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में दरियाए शारदा और अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में दरियाए घाघरा भी खतरे के निशान के उबूर कर चुकी है। चित्रकूट के राजापुर में दरियाए जमुना के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वजीर आला आज चित्रकूट का दौरे पर हैं ताकि मंदाकिनी नदी की वजह से सैलाब का जायजा ले सकें। वहां वो सैलाब से मुतासिर लोगों से बातचीत करेंगे और जरूरतमंद खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करेंगे। इस दौरान वजीर आला ने सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस आफत में मुतासरीन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया तमाम हसास इलाकों में इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। बारिश और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान, मवेशियों और मकानात के नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा तकसीम किया जा रहा है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
1: दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी इलाकों में अगले 4 रोज और मगरबी अजला में अगले 2 रोज तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। भारत और नेपाल की रेस्क्यू टीमें चिली में टनल में अपनी इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नेपाल में हिंदुस्तानी सफीर नवीन श्रीवास्तव ने कहा है कि करीबी स्याफ रूबीसी से टनल के दाखिली रास्ते तक रिसाई की सड़क भी जेरे तामीर है ताकि बचाव ऑपरेशन में आसानी हो। तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 1,344 हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना इलाके में इतवार को एक सड़क हादसा पेश आया। पुलिस सुप्रीटेंडेंट विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों को लेकर एक टेम्पो बहजोई चंदौसी सड़क पर सफर कर रहा था। लोगों का एक ग्रुप ई रिक्शे में सफर कर रहा था। एक ट्रक मुखालिफ सिमत से आ रहा था। इस हादसे में ई रिक्शे को बचाने की कोशिश में टेम्पो बजरी से लदे एक सामने आने वाले ट्रक से टकरा गया। ट्रक खुद को बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठा और उलट गया। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया अहलकार जाए वकू पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस सुप्रीटेंडेंट ने बताया कि पुलिस अब मुतवफी की शिनाख्त के लिए काम कर रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: यह आकाशवाणी वाराणसी है। 1:15 हुए हैं। आज इतवार है। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी बड़े बाबू की कसरत। लेखक हैं कैलाश गौतम, प्रस्तुति विपिन शर्मा की।

0: अरे बाहर आओ राजा, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं।
1: क्या है रे दरवरिया, तुम्हें जब सूझती है शरारत ही सूझती है। ये है का?
0: सुनो मुंशी राम निरंजन लाल उर्फ बड़े बाबू की तुम बेटा मुझसे ज्यादा ना उड़ा करो, समझे?
1: काहे भैया,
0: अरे ये है गुलदस्ता, लो पकड़ो इसे, ये तुम्हारे लिए है। सुना है आज रिटायर हो रहे हो?
1: हाँ, सो तो
0: नहीं नहीं
1: है।
0: नहीं आप सो तो है से काम नहीं चलेगा।
1: तो
0: अरे अब तो कसम टूटेगी, क्योंकि गुरु तुमने मेरे सामने कसम खाई है कि जब तक रिटायर नहीं हो गए तब तक शादी नहीं करोगे। अरे अब तो करोगे?
1: अरे दरबारी लाल, छोड़ो हंसी मजाक, आओ यार बैठो, कुछ हालचाल हो।
0: प्यारे आप फिलासफी मत छोड़ो,
1: क्या
0: करके दिखाओ तब समझो कि मर्द हो और अपने फैसले पर कायम हो, समझे? अरे अरे जरा इधर तो आओ, आज जल्दी आने का जी होता है। मेरे जाते रिटायरमेंट मुबारक हो बड़े बाबू, मुबारक हो।
1: यार दरबारी, इस गुलदस्ते की इज्जत जान देकर भी करूंगा मैं। दरबारी भाई, क्या बात करते हो है? गुरु, मौका तो आने दो।
2: बड़े बाबू, अरे बड़े बाबू, दो बधाइयां आपको।
0: हाँ, दो दो बधाइयां कैसी भाई?
2: हाँ, एक तो बड़े बाबू के रिटायर होने की, दूसरी आपका रिटायरमेंट होने वाली मैरिज की।
0: अरे भाई वही बधाई तो मैं भी दे रहा हूँ।
2: चार बड़े बाबू का हिसाब किताब साफ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन तो बीतने दीजिए।
0: मैं भी वही याद दिला रहा था कि तब तक तुम आ ही गए। अब पूछो पूछो, अरे तुम भी पूछो।
2: क्यों बड़े बाबू, ये सब क्या सुन रहा हूँ?
3: लीजिए पहले मिठाई खा लीजिए, आप भी लीजिए।
2: आज का दिन देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी।
3: एक और लीजिए।
2: अरे मिठाई खोखी भर मिठाई, कल बड़े बाबू की शादी है।
0: भाई बस,
2: अरे भाई भाई, तुम भी तो खाओ।
0: हलवाई होटल नाच तमाशा डेरा डंडा काजा बाजा ओड़ी घोड़ी की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, हो सब मैं करूंगा। मैं मेरी नाक मत कटाना गुरु।
2: ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो अपने मोहल्ले की है, मैंने उन्हें कल ही कर दिया।
1: लेकिन ए भाई भाई, ज्यादा ताम धाम नहीं होना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे भैया?
0: अरे लोग बात तो अब तक यही सोचते रहे कि आखिर बड़े बाबू शादी कर क्यों नहीं रहे है? तो तुम उनके सोचने पर मत जाओ, बस अपना काम करो, सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो लोगों की सोच बदल जाएगी, फिर लोगों की चिंता ही क्यों करते हो?
4: हेलो बड़े बाबू, बहुत बहुत बहुत मुबारक।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
5: बड़े बाबू, मेरी भी बधाई स्वीकार हो।
1: अच्छा अच्छा,
5: ये बताइए इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: वो
5: अच्छा लग रहा है ना?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम टेंशन फ्री है।
0: तो कहीं कोई चेहरा मोरा तजबीज हो कि सिर्फ हवा हवा ही हो रही है?
2: अरे नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, आपको पता नहीं है क्या?
0: क्या बताओ।
2: अरे ये हमारी स्टोनो मैडम होने वाली मिसेज बड़े बाबू हैं।
0: हालांकि ये बात बड़े बाबू ने ना कभी बताई और ना मैंने कभी पूछा, लेकिन भैया मैं भी रोज आदमी ही चढ़ाता हूँ, जानवर नहीं। बड़े बाबू के रंग ढंग से सब झलकता था, न जाने कितनी कितनी बार मैंने इन्हें साथ
1: साथ। बस यार बस यार, अब इतनी चाय मेरी मत करो यार।
2: गुरु कल का मामला फाइनल है।
0: क्यों भाई, लाइन क्लियर है ना? कि अभी भी किसी सिग्नल का इंतजार है?
1: यार मामला 50-50 है, ऊट किस किस किसी भी करवट बैठ सकता है।
0: देखो

0: पहले जब जाओ साथ साथ बताओ भाई।
1: अरे यार सब हम ही से पूछोगे हैं, अरे ये भी कोई बात हुई भाई, अरे कुछ उनसे भी तो पूछो मेरे यार है? मेरा मतलब है कि स्टेनो मैडम से
2: मैडम बाल आपकी कोर्ट में है।
3: देखिए बड़े बाबू से मैंने पहले ही बता दिया है कि शादी करने से पहले साल 6 महीना मैं बड़े बाबू के साथ रहकर उन्हें जांचूंगी परखूंगी। अगर बड़े बाबू कसौटी पर खड़े उतर जाएंगे तो चट मंगनी पट ब्याह, फिर देर नहीं।
4: और उसके लिए जरूरी है कि मैं भी दीदी के साथ इसी घर में रहूंगी, तब तक जब तक बड़े बाबू के बारे में दीदी की राय फाइनल नहीं हो जाती।
3: एक तो इन्हें अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना पड़ेगा और दूसरा ये कि घर का सारा कामकाज भी इन्हें ही निपटाना पड़ेगा।
4: और अगर बड़े बाबू सचमुच पास हो गए तो फिर कहना ही क्या।

0: वाह वाह वाह, अरे तैयारी से तो लगता है कि ओलंपिक 2000 में अकेले दिखाई दोगे। अरे धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे, हड़बड़ी में जान मत दे दो। दाना ना खास, घोड़ा सिर्फ खड़ा नहीं कराना। अरे कुछ टॉनिक वानिक भी लेते हो कि नहीं? सिर्फ कसरत ही चल रही है।
1: अरे यार बुरे फंस गए, सारी मटर गश्ती गाय, कहाँ चैन की नींद, दिन चढ़े तक सोते थे, कहाँ आधी रात तक जागना पड़ रहा है यार, और 4 बजे भोर में ही बिस्तर छोड़ देना पड़ता है।
0: अरे ये तो और अच्छी बात है।
1: अच्छी नहीं चलेगा, क्या अच्छी बात है जानते हो? इस मैडम या की तो भोर में ही टहलने की आदत है, और बिना चाय पिए टहलने भी नहीं जाती भैया। तो भैया पहले चाय बनाता हूँ, फिर उसे दोनों के बिस्तर पर पहुंचाता हूँ।
0: अरे और... थोड़े दिन की तो बात है, है? अरे फिर तो चांदी चांदी कटेगी।
1: अरे बाल आए ऐसे चांदी काटने से भैया।
2: बड़े बाबू आप एक भी काम सलीके से नहीं करते है? और समय से नहीं करते,
1: क्या हुआ?
2: आज आप दौड़ने क्यों नहीं गए?
3: अरे इनका दौड़ना जाए बाहर में, दौड़े चाहे ना दौड़े, मेरी भला से हफ्ते में मेरी 3 साड़ियां जला चुके हैं प्रेस करने में।
1: वो
3: कह देती हूँ आज शाम और शाम तक 3 नई साड़ियां आ जानी चाहिए।
2: बड़े बाबू ये मत भूलिए कि अभी आप ट्रायल पर हैं, और अगर आपका यही रवैया रहा तो फिर।
3: अरे आज तो इन्होंने घर का कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ कसरत कसरत, वो भी फालतू की। अरे मैं पूछती हूँ कि मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हुआ?
1: अभी हो जाता है, अभी हो जाता है,
2: अभी हो जाता है। आखिर कब हो जाएगा? दूध आया, ब्रेड आया, अंडा आया, कह दीजिए कि अभी हो जाते हैं।
0: ये कहते यार है, ये कहने में क्या जाता है?
1: हाँ ठीक है अभी हो जाता है, अभी
3: अभी हो जाता है। बड़े बाबू आप सचमुच वो, सचमुच में बड़े वो है, हो गई।
1: अब तो तुम्हारी छाती ठंडी हो गई भैया, मेरी दुर्दशा देख ली ना।
0: अरे ये तो गले पड़ी ठोस है, था तो देनी पड़ेगी बेटा, वरना हम सब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
1: यार तुम भी अजीब हो, तुम सबको मुंह दिखा सको इसके लिए क्या मैं अपना मुंह झाऊ से नुचवा लू? चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। मियां दरबारी लाल, बड़ी भी तो बड़ी भी, छोटी भी माशाल्लाह, उनका दिल दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है भैया।
0: अच्छा वो क्या कहती है?
1: अब छोड़ो यार जाने भी तो, मैं नखरा वगरा नहीं झेलने वाला हूँ। हाँ कोई बीवी बने चाहे ना बने, जाए अपनी ऐसी की तैसी में यार।
0: बड़े बाबू तू हिम्मत ना हारो, बस इसी तरह मोर्चे पर डटे रहो। अभी तो मैं

0: जी मैं हूं, अब जाता हूं फिर आऊंगा। अच्छा
1: बड़े बाबू। अरे अरे बड़े बाबू, सब ठीक है ना?
2: अब मैं कहूंगा तो कहोगे झूठ कहते हो, इसलिए भैया रे 2-4 मिनट रुक जाओ और देख भी लो और सुन भी लो। मैं भैया बस अभी गया और बस अभी आया।
3: नमस्ते चौरंगी प्रसाद जी, उर्फ कैशियर बाबू,
2: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या हाल है, कैसे आना हुआ?
2: अरे बस बड़े बाबू का हाल चाल लेने। कैसी कट रही है
3: खूब ठाट से कट रही है।
2: बड़े बाबू की सर्विस? कैसी है?
3: बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कही जा सकती।
4: यही आपने झाड़ू लगाया है और ये पोछा लगाया है? घर की सफाई ऐसी ही होती है। अरे आप कोई काम मन से नहीं कर सकते क्या?
5: ठीक है मैडम।
4: अरे बड़े बाबू आप भी कमाल करते हो है? इसी शौर पर मैं आपको अच्छा हस्बैंड होने का सर्टिफिकेट कैसे दे दूं?
3: आजकल बड़े बाबू दीदी से अपने लिए अच्छा हस्बैंड होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और दीदी का मन तनिक भी जीत नहीं पा रहे हैं। बाकी सब तो ठीक ही है, थोड़ा बड़े बाबू का आप हौसला बढ़ाते रहिएगा।
2: हाँ हाँ जरूर जरूर।
1: अरे बड़े बाबू
2: आइए आइए आइए। चिंता मत करिए बड़े बाबू, दिया वही है जो तूफान में भी जलता है। जीवन प्रास तो खा रहे हैं ना।
3: क्या सोच रही हो दीदी?
4: कुछ नहीं
3: कुछ नहीं,
4: तो कहना क्या चाहती हो?
3: बड़े बाबू के बारे में आपने क्या सोचा?
4: सोचना क्या है, आज सोच रही हूँ, फैसला सुना ही दूँ। जितनी करंट है इतनी बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जरा बड़े बाबू को आवाज तो दो।
3: अच्छा बड़े बाबू। अरे ओ बड़े बाबू।
1: जी हाजिर हुआ हूँ। कहिए क्या हुक्म है
4: बड़े बाबू?
1: जी
4: आज सोच रही हूँ, फैसला सुना ही दूँ। जाइए आप बाबू दरबारी डाल और कैशियर बाबू को भी बुला के लाइए।
1: अच्छा अच्छा
4: फौरन जाइए,
3: छटके में जाइए और छटके में आइए।
1: अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक।
3: बड़े बाबू की चाल ही बदल गई है।
4: बड़े बाबू की चाल बदल गई, खुलिया बदल गया, भाषा बदल गई, दिनचर्या बदल गई, बाकी क्या बचा? औरत अगर समझदारी से काम ले तो मर्द तो आगे पीछे ऐसा नाचते फिरे
3: जैसे बड़े बाबू।
1: नमस्ते।
4: नमस्ते जी। नमस्ते
3: नमस्ते।
6: सुना है आज आप अपना फैसला सुनाने जा रही हैं?
4: जी हाँ।
2: अरे वाह मैडम वाह, आप दोनों की सोच समझ पे हम सबको और बड़े बाबू को पूरा पूरा भरोसा है।
6: अरे तो देर किस बात की?
4: मुझे बड़े बाबू।
1: हाँ हाँ आगे बोलिए आगे बोलिए।
4: मुझे बड़े बाबू हर तरह से अब आगे नहीं बोल पाऊंगी, शर्माती है। सुनीता तू आके पूरा कर देना।
3: बड़े बाबू दीदी को हर तरह से पसंद है, तालियां।
1: मुबारक हो बड़े बाबू, मुबारक हो।
2: धन्यवाद धन्यवाद। मैडम कसरत से पीछा छूटा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: माय डियर बड़े बाबू आप जैसा हस्बैंड बड़े भाग्य से मिला।
6: अरे अब तो 100% मोहर लग गई। अरे अब आप चलिए, मंडप आप दोनों का इंतजार कर रहा है।
7: बड़े बाबू की कसरत। अभी आप ये झलकी सुन रहे थे, इसके लेखक थे कैलाश गौतम। भाग लेने वाले कलाकार श्री प्रकाश वाजपेयी, शांति स्वरूप प्रधान, कौशल शुक्ल, अंजू भट्टाचार्य और रीना राय। प्रस्तुति विपिन शर्मा की थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।
5: उसके साथ

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।

लोक रंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है और कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद अपनी फरमाइशें आपको भेजनी है और सबसे पहले कलाकार का नाम जरूर लिखें 7905519981 यानी 7905519981 ये कार्यक्रम का नंबर है। आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं रामचंद्र दुबे, शैल बाला सरकार और सतीश चंद्र और उनके साथी। रामचंद्र दुबे, शैल बाला सरकार और सतीश चंद्र। सबसे पहले लोकगीत कलाकार का नाम जरूर लिखें ताकि उनके गीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके। और आपके बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस कहरवा के साथ। कलाकार हैं रामचंद्र दुबे।

रामचंद्र दुबे का गाया ये कहरवा और फरमाइशें आप सबकी। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। जमानिया गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनाना सिंह और कयूम शाह। ये फरमाइश कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आई है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। हीरामणी वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा की फरमाइश दतरेंगी भाटापारा से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी हैं गांव चोहलदा बागपत के श्रोता। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन माही सेन और हर्ष कुमार सेन। पोफाली यवतमाल के श्रोता हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशुरी धान खुराना और तुलसी मस्कीन। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और परिवार के सदस्य बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ये फरमाइश व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आई है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष की। नेहरू भंडारकर, हरिशंकर साहू, सोनू देवांगन, अमरजीत और उनके मित्र हैं खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन। ये फरमाइश है अड़ार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा की। शिवा गोप, प्रेम गोप का

0: कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, सुनील यादव, शिव कुमार यादव, उमेश्वरी यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या उच्च भट्टी बिलासपुर से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिनपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब मेहताब कल्लू और मल्लू अंसारी, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ, साथ में नीलोफर फातिमा, आप सबका नाम आया है। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, बबरी बाजार चंदोली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। लिवाई छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा की फरमाइश जगराओं अनारकली बाजार से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की फरमाइश सुदामानगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से आई है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश।
1: अरे जी,
0: ये कहरवा है शैल वाला सरकार की आवाज में।

ये कहरवा आप सुन रहे थे शैल बाला, सरकार की आवाज में फरमाइशें आई इन श्रोताओं की। पटेल नगर मुगल सराय के हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर हैं सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के श्रोता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनकी माता जी हैं राज मुनिया, नारी पसदेवरा गाजीपुर से, थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता, दानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जय लाम से हैं छिंदवाड़ा बेरडी के श्रोता। राजगढ़ ब्यावर मध्य प्रदेश से गजराज लोधी, कांति लोधी, सुनैना लोधी और अनुराग लोधी। रमाशंकर यादव हैं रानीपुर सिरकोनी बाजार जौनपुर से। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा और विपिन गुप्ता। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना से वाराणसी में जगह है रतिनाथ त्रिपाठी, राखी, आर्या, एन्द्री, सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। सुमंत कुमार प्रजापति की फरमाइश हथौज बलिया से आई है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। एक लाइन में एक नाम लिखें और हिंदी में लिख सकें तो और बेहतर हो। बसंत कुमार ठाकुर, प्रमोद कुमार साहू, टीयूषी ठाकुर, चंदू ठाकुर, नया पारा भिरई बालोद से आप सब हैं और जमशेदपुर से हैं कुमारी प्राची ठाकुर और देविका ठाकुर। तकिया मड़ियाहू से हैं मोहम्मद अल्तमस शाह, दानिश शाह, इशरत हसरत शाह, साजिद शाह, रोमेश शाह और अबान शाह। और साथ में जमील अहमद शाह, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू की फरमाइश धनौरी तेलीवाला से आई है। अस्तुपुरा मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। ये फरमाइश भेजी है मुबारकपुर चितगिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन और फातमा सोगरा ने। मोहम्मद इकबाल हैं गया के हमारे श्रोता। शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल और रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद और पिंकी जायसवाल, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू, राज पैलेस मऊनाथ भंजन से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा, नवागढ़ कटई बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंकजीत और पुष्पांजलि, रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियान, सुप्रीत, प्रांजल, प्रकृति, ग्राम मेहदीगंज, पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से। अजय विश्वकर्मा, शीला विश्वकर्मा, अंश विश्वकर्मा, केसरीपुर भास्करा तालाब रोहनिया वाराणसी से। प्रयास करें कि एक जो संदेश भेजें उसमें एक ही स्थान के श्रोताओं के नाम लिखें, वरना बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं एक ही संदेश में। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। विशाल

मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से हैं। पुराना हाट दिलदारनगर गांव से भीष्म यादव, गोविंद यादव और पारस नाथ सिंह। और आवाज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, ये लोकगीत है सतीश चंद्र और साथियों की आवाज़ में।

अरे एक के संगे पढ़नी जा, अरे एक के संगे खेलानी हे सखी, एक के संगे पढ़नी जा, एक के संगे खेलानी, अरे खेलनी जा।

रे तोहरे तिलकिया में चढ़ा सोना चांदी, चढ़ा सोना चांदी हो ए सखी तोहरे तिलकिया में, तोहरे तिलकिया में चढ़ा सोना चांदी, अरे हमरों में, अरे हमरों में।

0: सतीश चंद्र और साथियों की आवाजों में ये पेशकश फरमाइश भेजी हमारे इन श्रोताओं ने अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो के श्रोता है। मुजफ्फरपुर बिहार से सुन रहे हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, गीतू, निहारिका और वंश। अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर। रमईपुर गोपालापुर जौनपुर से अवधेश तिवारी, प्रियका तिवारी, अभी तक आप लिख रहे हैं ये प्रियंका है या प्रियका है। शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और राम आश्रय तिवारी, साथ में बाबा यादव। सोनू बिंद जौनपुर के श्रोता है। गणुखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान।
1: तो हरा बाला मुआ ता जीलवा के मालिक, अरे हमारो

गोला बाजार बक्सर से ये फरमाइश श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद की है। राजा बाजार बिहिया आरा से हैं सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश हैं मुरादाबाद दुल्हापुर के श्रोता। दिलदार मेरी, ज्योति मेरी, जाह्नवी और दीक्षांत मेरी की फरमाइश कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी है रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से।

0: अरे तोरा मोरा ये कही समान हो सखी हमरो किसान बा, तोरा मोरा ये कही समान हो सखी हमरो।
1: पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। बोडागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा का व्हाट्सएप संदेश। रामसकल चौधरी हैं चोचकपुर, गाजीपुर के हमारे श्रोता। बगही केराकत जौनपुर से यश गुप्ता, बॉबी गुप्ता, अभि गुप्ता, सिद्धि गुप्ता और सिद्धू गुप्ता। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़ और उत्तम कुमार जमदाड़े हैं अंबेडकर चौक कोड़ी नांदेड़ से। प्रवीण कुमार बिंद, भारती देवी बिंद, कोयलरा भदोही के श्रोता हैं। निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज वाराणसी से, साथ में आनंद प्रसाद श्रीवास्तव आईएमएस बीएचयू वाराणसी से। जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और कयूम शाह दिलदार नगर के श्रोता हैं। आशीष कुमार महरेऊ जौनपुर से, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज और नवेद हुसैन। तो श्रोताओं, ये था आज का लोकरंग कार्यक्रम और आपकी फरमाइशें जितनी आई अभी तक वो कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजें। वो कार्यक्रम आज शाम 7:31 पर प्रसारित होगा। और अब आज का ये प्रोग्राम यानी लोकरंग समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये था श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized, after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
3: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो

0: भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
0: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर

0: वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पन बिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल

0: प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए संवैधानिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरो मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आपकी अपनी रेडियो हम सफर ऋचा के साथ। दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है राजा हिंदुस्तानी।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे बड़ी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, राजा हिंदुस्तानी की।

दोस्तों, 90 का दशक भी क्या दौर था ना। कसौटी जिंदगी की हो या उस दौर का हर एक लम्हा गानों और फिल्मों के नाम था। और जब भी 90 के दशक की लव स्टोरीज का जिक्र छिड़ता है, एक ऐसी फिल्म जरूर याद आती है जिसने थिएटरों को तालियों से गुजा दिया था, जिसके गाने सभी जगह चर्चा में रहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साल 1996 में आई आइकॉनिक फिल्म राजा हिंदुस्तानी की।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा हिंदुस्तानी कोई नई कहानी नहीं थी? यह दरअसल 1965 की मशहूर फिल्म जब जब फूल खिले का आधुनिक रिमेक थी, जिसमें शशि कपूर और नंदा नजर आए थे। लेकिन धर्मेश दर्शन ने इसे इस तरह से पर्दे पर उतारा कि यह अपने आप में एक मिसाल बन गई। दोस्तों, शायद आपको पता होगा

आरती के रोल के लिए करिश्मा पहली पसंद नहीं थी। यह रोल सबसे पहले जूही चावला को ऑफर किया गया था। उनके मना करने के बाद पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय के नाम पर भी विचार हुआ। आखिरकार यह रोल करिश्मा कपूर की झोली में गिरा और इसने उनके करियर का नक्शा ही बदल दिया।

दोस्तों राजा के रोल के लिए आमिर खान ने शुरुआत में इस स्क्रिप्ट को करने से हिचकिचाहट जताई थी, लेकिन निर्देशक धर्मेश दर्शन के समझाने पर वे तैयार हुए।

तक धर्मेश दर्शन के समझाने पर वे तैयार हुए। नदीम श्रवण का जादुई संगीत परदेसी परदेसी जाना नहीं, पूछो जरा पूछो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया और आए हो मेरी जिंदगी में, इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम 90 के दशक का तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। दोस्तों, जब कोई फिल्म जनता के दिलों पर राज करती है तो अवार्ड्स की तो जैसे बारिश हो जाती है। 1997 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में राजा हिंदुस्तानी का दबदबा रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजा हिंदुस्तानी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान या आमिर खान का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करिश्मा कपूर, सर्वश्रेष्ठ परदेसी परदेसी गाने के लिए उदित नारायण जी। इसके अलावा फिल्म ने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में भी 7 बड़े पुरस्कार अपने नाम किए थे।

की कहानी की शुरुआत शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सहगल यानी कि सुरेश ओबराय अपनी इकलौती और लाडली बेटी आरती करिश्मा कपूर को अपनी माँ आरती की दिवंगत माँ की यादों से जुड़ी जगह पालमपुर छुट्टियों पर भेजते हैं। आरती पालमपुर पहुँचती है जहाँ उसकी मुलाकात एक सीधे सादे स्वाभिमानी लेकिन थोड़े अड़ियल टैक्सी ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी आमिर खान से होती है। शुरुआत में राजा की सादगी और उसकी टैक्सी बसंती से आरती को थोड़ा अजीब लगता है। प्यार और उसकी ईमानदारी आरती का दिल जीतने लगती है। पालमपुर के खूबसूरत दृश्य, टैक्सी के छोटे मोटे झगड़े और राजा के दो दोस्त कमर

फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। घूमने के दौरान आरती और राजा को एक दूसरे से प्रेम का एहसास होता है कि शहर की बनावटी दुनिया से दूर राजा का प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। फिल्म में एक बड़ा मोड़ आता है जब आरती के शहर वापस लौटने का समय होता है। बारिश का मौसम और बिछड़ने का गम दोनों को एक दूसरे के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है।

कहानी में एक अलग मोड़ आता है। आरती और राजा बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब आरती के पिता मिस्टर सहगल को यह बात पता चलती है तो वे बेहद नाराज होते हैं। मिस्टर सहगल पालमपुर में आते हैं। राजा का गरीब होना और आरती का एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करना वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे आरती को छोड़ देने का फैसला करते हैं, लेकिन अपनी सौतेली पत्नी शालू अर्चना पूरन सिंह के उकसाने पर एक चाल चलते हैं। वे राजा और आरती को अपने मुंबई वाले महल जैसे घर में आने का न्योता देते हैं, ताकि वे राजा को नीचा दिखा सके। राजा अपनी आरती के लिए मुंबई आता है। शालू यानी कि उसकी सौतेली माँ और उसके भाई स्वराज टीकू तलसानिया मिलकर राजा के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। राजा को महंगे कोट पैंट पहनाए जाते हैं और फिर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है। राजापन का फायदा उठाया जाता है। गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि राजा आरती को छोड़कर पालमपुर वापस आ जाता है और आरती आगे चलकर एक बेटे को जन्म देती है। शालू चालाकी से आरती की चिट्ठियां राजा तक नहीं पहुंचने देती और राजा को यह विश्वास दिलाती है कि आरती उसे भूल चुकी है। जब आरती अपने बच्चे को लेकर पालमपुर आती है ताकि राजा से सब सच कह सके, तब उसकी सौतेली माँ की साजिशों के कारण राजा गुस्से में आकर अपने बच्चे को आरती से छीन लेता है। आखिर में सच्चाई का खुलासा होता है। राजा को जब पता चलता है कि सौतेली माँ शालू ने सहगल साहब की दौलत हड़पने के लिए यह सारा खेल रचा था और आरती ने कभी उससे बेवफाई नहीं की, उसे लड़ाई होती है। राजा अपनी पत्नी और बच्चे को गुंडों से बचाता है। मिस्टर सहगल को अपनी गलती का एहसास होता है। शालू की सच्चाई सामने आती है और राजा आरती का परिवार फिर से एक हो जाता है। दोस्तों, राजा हिंदुस्तानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 90s का वो जादू है

पीढ़ी को प्यार और स्वाभिमान का मतलब सिखाता है। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। उम्मीद है राजा हिंदुस्तानी का आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई कहानी और कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब सम्पन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। भोला भैया,
2: हाँ नंदू भैया,
1: देखा हो अनेकता में एकता, आई अपने भारत का विशेषता रहल हो। आ चुन्नू मुन्नू लोगन के भी अपने किताब में इकूल पढ़ावे पढ़े ना, आ मास्टर साहब लोग के पढ़ावे ना।
2: कहे ना नंदू भैया, देखा एकता में बहुत शक्ति होला। यदि एकता में के साथे अगर हम लोग मिलजुल के रहल जाए तो उसे बहुत सा काम आसान हो जाला नंदू भैया, है ना। और मिलजुल के रहले से ई हो कि कोनो भी समस्या हो, कोनो भी दुख परेशानी हो, तो के आसानी से काटल जा सकेला।
1: बिल्कुल सही कहला भोला भैया। स्कूली में लड़िकन के अंदर भी ई कुल भाव पैदा करे के चाही, स्कूल में मास्टर साहब लोग, आ घरे हुआ त घर परिवार के जौन बड़ बड़कवा हन उनके ई चाही कि अपने बच्चन के मन के भीतर ई भाव पैदा करें कि आसपास के लोग में, परिवार के ही लोग में सबके साथे मिल के रहें, सबके अपन दोस्त समझें, सबके अपन भाई समझें, आ सबके सुख दुख में जो न अपन साथ निभावें।
2: देखा नंदू भैया, अपने देश में भी कहल जाला कि एकता में अनेकता। अपन जो देश हो ना नंदू भैया, ये एकता में अनेकता का प्रतीक हो। देखा हम लोग के छोटैया में हम लोग एक कहानी सुनत रहली है कि जो छड़ी होला वो अगर एक होला ना तो आसानी से टूट जाला,
1: टूट जाला।
2: बाकी जब ओके मिला के एक गट्ठर बना दे जाए तो वो आसानी से ना टूटा।
1: बिल्कुल हो भोला भैया, हम हनो सुन ले रही अपने लड़काई में। आ लड़िकन के स्कूल के किताबन में भी इकुल चीज कहीं नहीं कहीं कहानी के रूप में पढ़े के सुने के मिल जाला। तो एक चीज मिला जुला के ई कहल हो कि अपने देश में या पूरे ही देखल जाए जितना धरती पे देश हो, सब जगह जौन है एक तरह का भाव जौन है पढ़ावल जाला, बतावल जाला बच्चन के कि भाई सब जने जौन है मिलजुल के रहें। खासतौर से अपने यहाँ तो भैया देखा हो भोला भैया, वसुधैव कुटुम्बकम, माने सब लोग धरती पे जितना लोग हैं सब लोग अपन परिवार हैं भैया। तो ई भाव तो हमहन के यहाँ बहुत पहले ही से रहल है। वेद पुराण भी बात कहलन, अपन जितना परंपरा है वो परंपरा भी यह बा, आ एकर निर्वहन भैया हमहन के आए समय में करत रहे के पड़ी, आ आए वाली पीढ़ी के भी इस चीज के बतावे के पड़ी। तो परंपरा का भाई अपन बात जब भई लेना भोला भैया, तो अपन जौन पौराणिक ग्रंथ हुआ ए कुल के बारे में भी हमन सब जने के जाने के चाहिए, चुन्नू मुन्नू के भी जाने के चाहिए। तो यही विषय पर एक ठे वार्ता है, एकर वार्ताकार हुआ डॉक्टर शशिकांत यादव। तो ये जो है चुन्नू मुन्नू के वार्ता ही सुनवावल जाए।
3: नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक बहुत रोचक विषय अपने पौराणिक ग्रंथों के विषय में उनके ऊपर जानकारी की जो बातें हैं वो आपसे हम चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत रोचक विषय है बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में बहुत सारे पुरानी परंपराएं, त्यौहार, देवी कथाएं और उनसे जुड़ी हुई तमाम शिक्षाएं जो हैं वो हमारे समाज में प्रचलित है, इनका हमको कैसे ज्ञान होता है या ये हमको कैसे पता चलती हैं? तो बच्चों ऐसा है कि इन सबको समझने में हमारे जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनकी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन्हीं पौराणिक ग्रंथों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे या बातचीत आपसे करेंगे। बच्चों ऐसा है कि पुराण शब्द का अर्थ जो होता है वो प्राचीन या पुरानी कथा से होता है और उससे जुड़ा हुआ ज्ञान। पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति या जिसको हम अपनी पारंपरिक बातों में, धार्मिक मान्यताओं में सृष्टि कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, देवी कथाओं,

ऋषि मुनियों, राजाओं, तीर्थ वंशों, धर्म और जीवन मूल्यों से जुड़ी तमाम कथाओं की जानकारी मिलती है। इन कथाओं का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य, दया, सेवा, सदाचार, तमाम विषयों की शिक्षा देना भी होता है। इन्हीं सारी बातों का जो संग्रह है वो इन कथाओं में मिलता है, और इन कथाओं का जो समूह है वो पुराणों या पौराणिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ होता है, जो कि भारतीय जो परंपरा है उस भारतीय परंपरा में कुल 18 महापुराणों का उल्लेख मिलता है। इनमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण जैसे प्रमुख पुराण आते हैं। अब अगर हम इनके विषय में जानेंगे या इनके विषय में हमारी जो जानकारी बढ़ेगी, तो जैसे शिव पुराण को अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें, तो शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाएं और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान शिव और पार्वती से जुड़े हुए जितने भी आख्यान या जितनी भी कहानियां हैं वो इसमें संग्रहित की गई हैं, और उन कहानियों के सहारे पृथ्वी और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं या जो प्राकृतिक जीवन है उसको शिव के साथ कैसे जोड़ा गया है, मान्यताओं के साथ कैसे जोड़ा गया है, परंपराओं के साथ कैसे जोड़ा गया है, भगवान शिव की महिमाओं का वर्णन जो है वो इसमें हमको मिलता है। ठीक उसी तरीके से भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं या भगवान विष्णु और सृष्टि और विभिन्न राजवंशों के जो जीवन का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण में मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन भक्ति की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण में देवी की महिमा का प्रसिद्ध वर्णन किया गया है, जिसमें आज हम दुर्गा सप्तसती के रूप में जो है वो एक कथा के रूप में भी जानते हैं। बच्चों, पौराणिक कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इन कहानियों या इन कथाओं के माध्यम से हम जो पारंपरिक ज्ञान होता है उसको संग्रहित भी करते हैं, और इन कहानियों के माध्यम से हम शिक्षा भी देते हैं। उदाहरण के लिए आप सबको प्रहलाद की कथा पता होगी, और प्रहलाद की कथा जो है वो विश्वास और दृढ़ता की सीख देती है। ठीक उसी तरीके से ध्रुव की कथा हमें लक्ष्य के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय का भी संदेश देती है। इसी प्रकार तमाम ऐसी पारंपरिक कथाएं और धार्मिक कथाएं हैं जो इन पुराणों के सहारे हमें बताती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पौराणिक ग्रंथ केवल धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इनसे हम प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, परंपरा, तीर्थ, भूगोल, राजवंश और लोक जीवन से जुड़ी हुई सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इन्हीं पुराणों के सहारे हमको पता चलती हैं। एक तरीके से ये भारतीय समाज की, भारतीय परंपरा की जो कथाएं हैं या जो उनके जीवन का जो सार है या जो उनका सामाजिक जीवन है, उन सबकी जानकारियों का एक समुच्चय स्रोत जो है वो ये पौराणिक ग्रंथ हैं। इसलिए इतिहास और संस्कृति को समझने वाले विद्वान भी इन ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं, या इन ग्रंथों का विशेष जो है महत्व जो है वो हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। लेकिन बच्चों, हमें इस बात को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं का वर्णन पढ़ते समय हमें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर कथा अपना संदेश और सांस्कृतिक महत्व जो है वो अपनी सहारे जो है वो आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करती है। क्योंकि जब ये लिखी गई तो वो समय और आज के समय में बहुत सारी चीजें जो है वो बदली हुई हैं, इसलिए कई बार ये होता है कि हमको उन कथाओं को सुनते समझते वक्त जो है वो तर्क और वस्तुनिष्ठता के विश्लेषण को भी समझना चाहिए। ठीक उसी तरीके से, चूंकि आज विज्ञान और तकनीकी का युग है, हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को जानना चाहिए। इससे हमें अपनी सांस्कृतिक और विरासत पर गर्व करने के साथ साथ अच्छे जीवन को भी समझने का अवसर मिलता है। इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि ये जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं या जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं वो एक तरीके से सीधे तौर पे अगर हम ये समझें कि इनके सहारे हम एक तरीके से पूरे पौराणिक परंपराओं में हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों का जो समुच्चय संग्रह है वो भारतीय इतिहास में हिंदू परंपरा की कथाओं, धर्म, दर्शन और सृष्टि विज्ञान का वर्णन करते हैं। अगर हम इनके विश्लेषण इनका करें तो आपको मैंने पहले भी ये आपसे ये बात कही कि पुराणों की जो रचना है या पुराणों का जो रचना का जो श्रेय है वो एक तरीके से प्राचीन कथाओं, प्राचीन परंपराओं को सहेजने के लिए किया गया था, और

0: विवरण मिलता है या पुराणों की जो रचना का जो श्रेय है बच्चों, वो पारंपरिक रूप से महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन या पुरानी कथा। अगर हम पुराणों के विषय में विश्लेषण करें तो मैंने चूंकि आपको पुराणों की कुछ कथाओं के ऊपर चर्चा की, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम पुराणों के पांच लक्षणों या पुराणों के पांच विषय के रूप में आपसे मैं चर्चा करूं तो एक जो संदर्भ आता है वो है सर्ग, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। दूसरा संदर्भ है प्रतिसर्ग, सृष्टि के पुनर्निर्माण या प्रलय का विश्लेषण जो है वो इसमें किया गया है। तीसरा संदर्भ जो है वो वंश के लिए जुड़ता है, जहां पे देवताओं और ऋषियों की वंशावली लिखी गई है। चौथा जो संदर्भ है वो मन्वंतर यानी कि विभिन्न मन्वंतरों के काल के ऊपर विवरण दिया गया है। और पांचवा और अंतिम जो लक्षण है वो वंशानुचरित है, यानी कि राजवंशों का इतिहास। अगर सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित इन पांचों संदर्भों को देखा जाए तो ये पुराणों के पांच पारंपरिक लक्षण हैं। और इन्हीं पुराणों के पांच लक्षणों के आधार पर बाकी के जो पुराण हैं वो लिखे गए हैं या उनके संदर्भ जो है वो बतलाए जाते हैं। एक अन्य संदर्भ जो जुड़ता है वो है 18 महापुराणों का। चूंकि पुराणों को बच्चों हमने तीन परंपराओं में बांटा है, एक सात्विक पुराण के संदर्भ और दूसरा तमस पुराण के संदर्भ और चौथा तीसरा जो है राजस पुराण के संदर्भ में। तो इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर इन पौराणिक ग्रंथों और इन पौराणिक परंपराओं के सहारे अगर हम कुछ जानते हैं तो हमारी अपनी पारंपरिक मान्यताएं और पारंपरिक कथाएं हैं। इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये पौराणिक कथाएं या ये पौराणिक ग्रंथ जो है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है और हमारे पौराणिक ग्रंथ हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए आपको इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अच्छे संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर शशिकांत यादव के देखा वार्ता हो गए।
2: अब बच्चा लोग का
1: लोगन के जैसे गीत सुनवा देवल जाए।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख।
1: देखा हो भोला भैया, बच्चा लोग जोन हा बाल गीत सुन लेना। अब चुन्नू मुन्नू से हमन ले लेवल जबिदा। तो बच्चों
2: जय हिंद।
3: अभी नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: राहों में मुश्किलें आए तो घबराना मत, गिर जाओ अगर तो रुक जाना मत। मंजिल मिलेगी एक दिन जरूर, बस अपने हौसलों को कभी झुकाना मत।
1: दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के युवानी कार्यक्रम की, जिसमें आज के सफर की आपकी साथी हूं मैं तनिष्का
0: और मैं जयशालिनी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, आपने सुबह उठकर अपना फोन देखा और सोशल मीडिया पर आपके लिए कई ऐसे कमेंट्स पड़े हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं।
1: और शुरुआत में आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब वही चीज बार बार होने लगे तो लगातार मैसेज आए, मजाक के नाम पर आपको नीचा दिखाया जाए या आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जाए,
0: तब ये बात सिर्फ मजाक नहीं रह जाती, ये हो सकता है साइबर बुलिंग।
1: बिल्कुल। साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग चैट या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना, अपमानित करना, धमकाना या उसके बारे में गलत बातें फैलाना।
0: और इसकी एक बड़ी समस्या ये है कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की बुलिंग से अलग साइबर बुलिंग की पहुंच बहुत बड़ी होती है।
1: एक कमेंट, एक फोटो, एक वीडियो और वह कुछ ही मिनटों में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है।
0: कभी कभी तो दोस्तों बुली करने वाला व्यक्ति हमारे सामने होता भी नहीं है, स्क्रीन के पीछे बैठकर की गई बातें भी सामने वाले के आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है।
1: लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो चुप रहने की एकमात्र रास्ता नहीं है।
0: सबसे पहले जवाब देने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, गुस्से में उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जवाब देने से स्थिति और बिगड़ सकती है।
1: दूसरा, सबूत संभाल कर रखिए। मैसेज, कमेंट, पोस्ट या प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो यही रिकॉर्ड शिकायत करने में मदद कर सकता है।
0: तीसरा, जिस व्यक्ति ने परेशान किया है उसे ब्लॉक या रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आमतौर पर रिपोर्ट, ब्लॉक और प्राइवेसी कंट्रोल जैसे विकल्प मौजूद होते हैं।
1: और चौथा, शायद सबसे ज़रूरी, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। माता पिता, शिक्षक, दोस्त या परिवार का कोई भी सदस्य। किसी को अपनी बात शेयर करना कोई कमज़ोरी नहीं है।
0: ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मदद मांगना एक समझदारी भरा कदम है।
1: और अगर मामला गंभीर हो, जैसे धमकी, निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या लगातार उत्पीड़न, तो इसे हल्के में ना लें। उचित कानूनी सहायता या साइबर क्राइम की आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें।
0: लेकिन सिर्फ साइबर बुलिंग से बचना ही नहीं, हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा भी ध्यान देनी चाहिए।
1: जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक करें, सोच समझ कर तय करें कि आपकी पोस्ट, फोटो और व्यक्तिगत जानकारी आखिर देख कौन सकता है।
0: पासवर्ड को मजबूत रखें, अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो वहां पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें।
1: और एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, ऑनलाइन किसी से भी अपनी निजी जानकारी, पासवर्ड, OTP या किसी ऐसी तस्वीरें शेयर ना करें जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है,
0: क्योंकि डिजिटल दुनिया

0: हमें डिलीट करने के बाद भी किसी चीज़ की कॉपी कहीं और बड़े आराम से मौजूद हो सकती है दोस्तों।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं या किसी की पोस्ट पर कमेंट करते हैं, तो एक सेकेंड रुककर सोचिए।
0: अगर यही बात मेरे से कही जाती या मेरे बारे में कही जाती तो मुझे कैसा लगता?
1: क्योंकि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान है जिसके पास फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं।
0: इसलिए मजाक कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी राय भी रखिए।
1: लेकिन किसी को चोट पहुंचाने की कीमत पर नहीं।
0: इसलिए दोस्तों याद रखिए, ऑनलाइन होना हमारी पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी उससे कहीं बड़ी है।
1: तो खुद भी सुरक्षित रहिए और किसी और के लिए इंटरनेट पर असुरक्षित मत बनाइए।
0: थिंक बिफोर यू टाइप, क्योंकि आपके शब्द स्क्रीन के पार भी असर छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करने की बारी आती है तो कहते हैं कल से पक्का। हाँ, कल से पक्का।
0: बिल्कुल सही कहा तनिष्का तुमने, और वो चीज़ है क्या? फिटनेस। वैसे बताइए दोस्तों कि आप में से कितनी बार सोचा है आप लोगों ने कि एक बार अब रोज सुबह उठकर ना एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, खाना भी हेल्दी खाएंगे, और फिर रोज सुबह अलार्म बजते, बस बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और।
1: और ये 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन सच कहें तो फिटनेस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है। फिट रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी सकें।
0: बिल्कुल, हम दिन भर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर के काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे शरीर के लिए हम कितना समय निकालते हैं?
1: और फिटनेस का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप रोज़ दो दो घंटे जिम में बिताते हैं। शुरुआत बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे रोज 20-30 मिनट तेज चाल से चलना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या घर पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर लेना।
0: हाँ, क्योंकि असली बात है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ज़्यादा अच्छा है दोस्तों कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए अपने शरीर के लिए।
1: और दोस्तों, फिटनेस में ना सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं आती, हमारा खाना, नींद और हमारा डेली रूटीन भी उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
0: बिल्कुल, अगर हम घंटों बैठे रहें, नींद पूरी ना लें और खाने में हर समय जंक फूड लेते रहें, तो सिर्फ कभी कभार एक्सरसाइज करने से पूरी बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसलिए अपनी प्लेट को थोड़ा बैलेंस लाइए, फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती हैं दोस्तों।
1: और एक और बात दोस्तों, फिटनेस का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए रनिंग अच्छी है, किसी को योगा पसंद है, किसी को साइकिलिंग, और किसी को बस सुबह की सैर करना पसंद है।
0: बिल्कुल, इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप अपने शरीर को एक्टिव कैसे रख रहे हैं।
1: तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा काम करके दिखाइए, अपने दिन के सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालिए। फोन थोड़ा दूर रखिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और अपने शरीर को मूवमेंट दीजिए।
0: क्योंकि हमारा शरीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर ही याद करें, इसकी देखभाल हमें हर दिन करनी चाहिए।
1: और फिटनेस को कोई पनिशमेंट मत समझिए दोस्तों, इसे अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनाइए जिसके बाद आप खुद को थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव और खुश महसूस कर सकें।
0: तो आज से ही, कल से शुरू करेंगे नहीं,
1: बल्कि आज से ही थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, बोलिए।
0: क्योंकि फिटनेस कोई मंजिल नहीं, एक लाइफस्टाइल है।
1: तो चलते फिरते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए, और रोज की टेंशन को बोलिए फिकर नॉट।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
9: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
10: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
10: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
11: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
10: डायल कीजिए
12: 0542227658।
11: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
13: दोस्तों, कभी कभी इतिहास की किताबें बंद करके ना अगर हम अपनी दादी नानी की कहानियों की ओर लौटें तो पता चलता है कि हमारे इतिहास में सिर्फ तारीखें और युद्ध नहीं, बल्कि किस्से, रहस्य और किले और किरदार भी छिपे हैं।
14: बचपन में सुनी उन कहानियों में कोई राजकुमार होता था, कोई रहस्यमय किला, और कभी कभी ऐसा तिलिस्म जिसे सुलझाने के लिए कल्पना भी छोटी पड़ जाए।
13: और ऐसी ही एक मशहूर कहानी हमें लिए जाती है चंद्रकांता की दुनिया में।

0: तिलिस्म और अयारी के बीच एक किला बार बार हमारी कल्पना में उभरता है, वो है चुनार का किला।
1: गंगा के किनारे बसा चुनार, मिर्जापुर की ऐतिहासिक धरती का वह हिस्सा है जिसकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, उसकी मिट्टी और उसकी दीवारों में भी सुनाई देती है। और जब बात चुनार की हो तो वाराणसी से उसका रिश्ता भी अपने आप कहानी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि पूर्वांचल की ये पूरी धरती इतिहास, लोक कथाओं और संस्कृति की अनगिनत परतें अपने भीतर समेटे हुए हैं।
0: तो अब इंतजार किस बात